ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों के साथ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम

0: से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश है आज का चिंतन।

आज का युग प्रतियोगिता का युग है। सबके सब मानो दौड़ लगा रहे हैं और हर आदमी येन केन प्रकारेण दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भाग रही है और सबको मंजिल तक पहुंचने की भीषण हड़बड़ी है। नियम कायदे कर्तव्य की किसी को चिंता नहीं, बस गंतव्य तक पहुंच जाना है, चाहे जैसे भी हो। रास्ते की महत्ता तो खत्म हो गई, मगर यह सही दृष्टि नहीं है। कल्पना करें कि दो आदमी नदी में बहे जा रहे हैं, एक सिर्फ हाथ पैर फेंकने की धुन में है और जल्दी ही जल्दी किनारे तक पहुंच जाना चाहता है, जबकि दूसरा बहा भी जा रहा है और अगल बगल के परिवेश को देखता भी जा रहा है। उसके लिए मंजिल तक किनारे तक पहुंचना ही काफी नहीं है, रास्ते की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मगर आज के यांत्रिक युग में रास्ते को महत्व देने की न तो किसी को इच्छा है, न अवसर, न उतनी फुर्सत। बस दो चार हाथ मारे और किनारे लगे। यह आदमी सफल आदमी तो कहला सकता है, पर ज्ञानी नहीं। आज विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यह अराजकता सबसे ज्यादा है। छात्रों को अध्ययन में कोई रुचि नहीं, वे तो जल्द से जल्द परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं, गेस पेपर, प्राइवेट ट्यूशन आदि के शॉर्टकट से। शिक्षकों को भी न तो छात्रों को ज्ञान देने में कोई रुचि है, ना फुर्सत। वे तो कोचिंग वगैरह के रूप में दुकान खोले बैठे हैं। हर तरह का इंतजाम है वहां छात्रों को शॉर्टकट से परीक्षा की वैतरणी को पार कराने के लिए। इसलिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ग्रेजुएट उत्पादित करने वाली फर्म कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसकी तुलना संसार के किसी भी धन से नहीं की जा सकती है, पर इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन।

डिग्री पाने की लालसा में भ्रमित छात्र अध्ययन जरा भी नहीं करना चाहते। ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लंबा है, परिश्रम की मांग करता है। महाभारत में एक बड़ी रोचक और प्रासंगिक कथा है। यवकृत नामक एक ऋषि कुमार बिना अध्ययन किए अनायास वेदों का प्रकांड ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर इंद्र को उसके समक्ष आना ही पड़ा। उन्होंने उसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा और जब ऋषिपुत्र ने उन्हें अपनी अदम्य लालसा बताई तो इंद्र ने उसे बहुत समझाया कि विद्या वरदान से नहीं मिलती, उसके लिए तो अध्ययन करना चाहिए। पर वह तो तुरंत फुरंत बिना परिश्रम किए विद्वान होना चाहता था, उसे इंद्र की सलाह भला क्यों अच्छी लगती। वह तपस्या में लीन रहा। एक दिन यवकृत समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी में बालू भर भर कर समुद्र में फेंक रहा है। यवकृत के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा कि ऐ बाबा, तुम यह क्या कर रहे हो? बूढ़े ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, असल में मुझे समुद्र के उस पार जाना है। बालू इसीलिए समुद्र में फेंक रहा हूं कि यह भर जाए तो मैं पार कर सकूं। यवकृत को लगा कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो गया बाबा? मुट्ठी भर बालू से तुम समुद्र भर दोगे? बूढ़े ने, जो स्वयं इंद्र थे, छूटते ही कहा, हे ऋषिपुत्र, जब तुम बिना अध्ययन किए सिर्फ तपस्या करके चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता बन जाने का दुस्साहस पाल सकते हो, तो मैं मुट्ठी मुट्ठी बालू डालकर समुद्र क्यों नहीं भर सकता? ऋषिपुत्र को मानो ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन तपस्या छोड़कर वह अध्ययन चिंतन में लग गया। कहने का तात्पर्य यह कि हर काम उचित तरीके से ही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने मात्र से पूरा नहीं हो जाता। बिना विषयों के गहन अध्ययन के डिग्री मिल सकती है, ज्ञान नहीं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, पेश है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में। दोस्तों, पवित्र श्रावण माह की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शंकर मौजूद हो चुके हैं इस धरती पर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए। ऐसे में आइए वंदना में आज हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं जो महाकाल हैं,

नमः शिवाय। इसी नाम में समाहित है संपूर्ण संसार और यही है जग विधाता सारे दुख दर्द हरने वाले भोलेनाथ। आइए श्रावण माह में हम अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं और सुबह सुबह लेते हैं उनका ही नाम।

0: सुबह सुबह ले शिव का नाम। आप सुन रहे थे हरिहर की आवाज में ये भजन। अब आइए सुनते हैं कांवरियों की वो मस्ती भरी झुंड की आवाज, जो इस वक्त बाबा धाम जा रहे हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने। आइए उनके साथ हम भी उनके साथ रम जाएं शिव के रंग में।
1: Boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy bum, boy

Bourbon, Bourbon, Bourbon, Bourbon, Bourbon, Bourbon, Bourbon. दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने सुना। हम बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से कार्यक्रम वंदना, और आज वंदना में है तो सिर्फ और सिर्फ शिव भजन और शिव की ही गुणगान। आइए सुनते चलते हैं शिव भजन में अब अगला गीत हंसराज रघुवंशी की आवाज में।

शिव तांडव श्रोतम, आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में। अब आइए कार्यक्रम में चलते चलते हम जयकारा लगाते हैं और आरती उतारते हैं भगवान भोलेनाथ की।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश है श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे इसका भाग संख्या 49, एपिसोड नंबर 49।
1: एपिसोड नंबर 49।

संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज आपने सुना इसका एपिसोड नंबर 49। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। श्रोता, अब चलिए हम आपको रूबरू करा दें अपने केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों से।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही पल बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और प्रातः 7 बजे आप लुत्फ उठाएंगे लोक गीतों का, कार्यक्रमों का लोक रंग। दोस्तों, सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे परिवार कल्याण पर आधारित हमारा कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज डॉक्टर निशित रंजन जानकारी देंगे बढ़ती उम्र में हड्डियों में होने वाली आम परेशानियों के संदर्भ में, जिनसे बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी ममता कुमारी प्रसाद। फुलवारी बच्चों के लिए यह साप्ताहिक कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे आज मणिपाल स्कूल हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगाकर्म रंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। प्रस्तुत करेंगे अनामिका और रहमता। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजीव कुमार, संयोजक होंगे विक्रम कुमार रंजन। दोस्तों, सुबह 8 बजे होगा समाचार प्रभात का वक्त, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार ये होगा प्रातः 8:30 पर, जिसे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय, आज आप सुनेंगे इस प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 4। 9 बजे होगा विविध भारती का कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और 10 बजे सुनेंगे अपना फेवरेट प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।

श्रोता दोपहर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम लगातार सुबह 11 बजे से और फिर संध्या 5:02 पर हम हाजिर होंगे आपके बीच लेकर अपना कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग हमारे युवा दोस्तों को संबोधित संध्या 5:30 पर। साथ ही 6 बजे होगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से और 6:02 पर मेहनत कश श्रमिकों के लिए आप सुनेंगे हमारे केंद्र से

दोस्तों कार्यक्रम में होगी फिल्म संगीत रजनीगंधा और साथ ही साथ ऑल टाइम हिट्स के साथ आज सजेगी गजलों की महफिल शाम में गजल आपके ही केंद्र एफएम 2.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि कालीन सभा में और हमारी

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:54 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: राज्यं षट्षष्ट्यधिक अष्टशतोत्तर सप्तसहस्रकोटि रूप्यकाणि, महाराष्ट्र राज्यं च द्वाविंशत्यधिक सप्तसहस्रकोटि रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गो नगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतम् एकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट एफ 57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7 बजे श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम लोक रंग। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं आपके लिए लेकर कार्यक्रम लोक रंग। और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटा नागपुर के माटी की सौंधी सौंधी खुशबू और यहाँ की विरासत को गीतों में पिरोकर। लीजिए श्रीनंदन पांडे और साथियों के आवाज में ये पहला आपका खोटा गीत आपके लिए।

0: धन्यवाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: लोकरंग श्रोता, आप सुन रहे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। यूं तो साथियों, हमारे झारखंड राज्य में कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, गुनगुनाई जाती है, लेकिन खोटा की अपनी ही एक तरावट है, ये दिलों पर उतरती है। इसलिए आज खोटा लोकगीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, और ये गीत जिसे इस वक्त आप तक पहुंचने को है नजदीक, उसे गाया है मंटू कुमार और साथियों ने।

मंटू सिंह और साथियों के आवाजों में साथियों आपने सुना ये गीत। अब आइए सुनते हैं एक और खोटा लोकगीत शिवनंदन पांडे गरीब और साथियों की आवाज।

सिर नंदन पांडे और गरीब के साथियों के आवाजों में आपने सुना ये खोटा लोकगीत। और दोस्तों आइए चलते चलते अपने छोटा नागपुर के साथ झूम उठते हैं, यहाँ के गीत गुनगुना उठते हैं और अपनी एफएम पर एक बार फिर से धमाल मचाते हैं इस खोटा लोकगीत के साथ, जिसे गाया है श्री नंदन भाई ने अपने तमाम साथियों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं लीजिए पेश है परिवार कल्याण पर आधारित कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशित रंजन, जो जानकारी दे रहे हैं बढ़ती उम्र में हड्डियों में होने वाली आम परेशानियों के संदर्भ में। इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी ममता कुमारी प्रसाद। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं डॉक्टर निशित रंजन से ये भेंटवार्ता।
1: हम अपने कार्यक्रम में बात करते हैं डॉक्टर निशित रंजन से, जो कि हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ हजारीबाग में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे बढ़ती उम्र में हड्डियों में होने वाली आम परेशानियों के विषय में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको हमारा नमस्कार है।
2: नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में हड्डियों में होने वाली आम परेशानियां आम आदमी को क्या क्या हो सकती हैं?
2: बढ़ती उम्र में खास करके ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां सामान्य है।
1: जी, तो अभी आप बताएं ऑस्टियोपोरोसिस तो ये क्या चीज है?
2: ऑस्टियोपोरोसिस को साधारण भाषा में छिद्रयुक्त हड्डियां कहा जाता है। इसमें अस्थि का घनत्व तथा प्रकृति बदल जाती है। अत्यधिक छिद्रयुक्त अस्थियां होने पर फ्रैक्चर की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों का घनत्व कम होना, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है।
1: जी, तो इसके ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये महिला या पुरुष दोनों को प्रभावित करते हैं या सिर्फ एक को?
2: दोनों प्रभावित होते हैं, मगर महिलाएं खास तौर से इससे प्रभावित होती हैं, खास करके के पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में। ये हमारी महिलाओं की हड्डियां होती हैं बहुत ही तेजी से कमजोर होती हैं, इसलिए खास करके महिलाएं इससे प्रभावित ज्यादा होती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि हड्डियां जो है वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसमें कुछ छेद जैसे हो जाते हैं। जी, तो इसके क्या कारण है?
2: इसके कारण एक तो बढ़ती उम्र है, हार्मोनल चेंजेस हैं, साथ में यदि पेशेंट्स लंबे टाइम से स्टेरॉइड पे है तो फिर हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं।
1: जी, तो बढ़ती उम्र कहने का मतलब क्या है कि कितनी उम्र के बाद ये संभावना ज्यादा होती है ऑस्टियोपोरोसिस की?
2: औरतों में 40 के बाद औसतन 30% प्रतिवर्ष के हिसाब से हड्डियां कमजोर होती हैं, और ये 50 से 60 साल तक लगातार चलता रहता है। उसके बाद फिर एक प्लेट्यू आता है जहां पे ये बहुत ही स्लो हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आहार में कैल्शियम विटामिन की कमी, नित्य व्यायाम में कमी, धूम्रपान मदिरापान, महिलाओं का अत्यधिक वजन बढ़ना, कुछ विशेष प्रकार की दवाएं जैसे स्टेरॉइड, और फिर मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो कि बहुत ही कॉमन कारण है। इनके अलावा आजकल जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, इन सब के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही सामान्य हो गया।
1: जी डॉक्टर साहब, ये सामान्य सी गांव में बात है कि थोड़ी सी भी परेशानी होने पर महिलाएं समझती हैं कि हर महीना जो परेशानियां उनको आती हैं उसे छुटकारा के लिए एक आम बात है कि बच्चेदानी को निकलवा दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि इसके कारण भविष्य में उन्हें और भी ज्यादा परेशानियां होंगी। जी, तो इसकी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या हैं?
2: हड्डियों में दर्द, आसानी से टूटना। ऑस्टियोपोरोसिस के सामान्य रूप से दिखने वाले कारणों में जो हड्डियों में दर्द, टांगों में

0: कि टांगों में संकुचन, दर्द, शरीर में दर्द और हाइट कम होना बढ़ते उम्र के साथ, मेरुदंड की मेरुदंड में झुकाव
1: जी।
0: ये सब सामान्य रूप से दिखने वाली कारण है।
1: तो डॉक्टर साहब, इन कारणों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, इन पे ध्यान ना दिया जाए, तो भविष्य में और कौन सी गंभीर परेशानियां उन्हें हो सकती हैं?
0: खास करके फ्रैक्चर बहुत ही सामान्य हो जाता है, कलाइयों के, मेरुदंड के, कमर के, ये सब बहुत ही सामान्य से फ्रैक्चर हैं, जो कि बहुत ही ऑस्टियोपोरोटिक व्यक्तियों में देखा जाता है, बहुत ही सामान्य रूप से देखा जाता है
1: जी। यानी कि जिस व्यक्ति को या जिस महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है, उनमें फ्रैक्चर जो हो बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर हल्की से भी उन्हें चोट लगे या गिर जाए तो फ्रैक्चर जल्दी होने की संभावना, हड्डी उनकी जल्दी टूट सकती है, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर है।
0: जी हाँ।
1: तो डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस जो मरीज है, उनकी क्या क्या जांच वो करवाएं या उन्हें करवानी चाहिए?
0: ऑस्टियोपोरोसिस के लिए BMD कहते हैं, बोन डेंसिटी टेस्ट।
1: जी, वो क्या है सर?
0: BMD में हड्डी का घनत्व की हम जांच करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि हमारी जो हड्डी है वो कितनी कितनी मजबूत है।
1: जी, और क्या है सर?
0: खास करके बढ़ती उम्र के साथ, या फिर मधुमेह के रोगी, गुर्दे के रोगी, इन सब में ये ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बहुत रहती हैं। उन्हें यह जांच करवाते रहना चाहिए, समय समय पर करवाते रहना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, किसी ऑस्टियोपोरोसिस मरीज तो बाद में बनता है, लेकिन उन्हें किन बातों की सावधानियां शुरू से रखनी चाहिए?
0: ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को शुरू से ही खाने में कैल्शियम युक्त आहार का ये इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, एक नहीं हो तो कैल्शियम की दवाई ले सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी करवा सकते हैं, धूम्रपान मदिरापान से बचना चाहिए। खास करके औरतों में 40 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां 40 से 60 साल तक बहुत ही तेजी से कमजोर होती हैं। इस टाइम में दवाओं का, कैल्शियम की दवाओं का सेवन अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि ये कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी की जा सके शरीर में।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे हैं कैल्शियम की जो दवाएं हैं वो लेनी चाहिए, तो क्या बिना डॉक्टर के सलाह से भी ये दवाएं 40 के उम्र के बाद ली जा सकती हैं?
0: हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही कुछ भी दवा का सेवन करें।
1: जी, तो अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपने बढ़ती उम्र में हड्डियों में होने वाली आम परेशानियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमें विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, और इस कार्यक्रम में डॉक्टर निशित रंजन ने जानकारी दिया कि बढ़ती उम्र में हड्डियों में होने वाली कौन कौन सी आम परेशानियां हैं और इनसे कैसे निजात पाया जा सकता है। जानकारी हासिल कर रही थी हमारी ओर से ममता कुमारी प्रसाद, और इसी के साथ ये कार्यक्रम घर संसार यहीं समाप्त होता है।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर। श्रोता लीजिए पेश है बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मणिपाल स्कूल हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का आज पुनः प्रसारण। संकलन एवं वाचन है अनामिका और नाहमता प्रवीण की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन।

0: नमस्कार
1: प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों और हमारे सभी प्रिय श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बच्चों का सबसे प्यारा कार्यक्रम फुलवारी।
0: मैं हूँ नहमता। कितनी खुशी की बात है कि लंबे अंतराल के बाद आपकी अपनी फुलवारी फिर से सज गई है। वही मस्ती, वही हंसी, वही सीख और ढेर सारी नई बातें लेकर हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर है।
1: और मैं हूँ अनामिका। जैसे बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वैसे ही हमारी फुलवारी में खिलेंगे नन्हे सपने, प्यारी मुस्कानें, मजेदार कहानियाँ, ज्ञान से भरी बातें, पहेलियाँ, गीत और बच्चों की शानदार प्रतिभाएं।
0: तो प्यारे बच्चों, अपनी कल्पनाओं को दीजिए उड़ान, मुस्कान को रखिए बरकरार और हमारे साथ बिताइए अगले कुछ खूबसूरत पल, क्योंकि अब हर मुलाकात होगी नई सीख, नए उत्साह और नई खुशियों के साथ।
1: तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकालिए, अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ बैठ जाइए और अगले कुछ पलों तक हमारी इस खूबसूरत फुलवारी का हिस्सा बन जाइए।
0: जय हिंद बच्चों।
1: तो आइए मिलवाते हैं आप सभी को आज के फुलवारी के मेहमान दोस्तों से। वो है मणिपाल स्कूल के बच्चे। कैसे हैं बच्चों आप सब?
0: और प्रोग्राम देने के लिए रेडी है ना?
1: तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के पास और देखते हैं ये क्या सुनाएंगे। आप अपना नाम बताइए पहले।
2: नाम सहमत।
1: किस क्लास में आप पढ़ते हैं?
2: LKG में।
1: और क्या सुनाएंगे आज?
2: चंदा मामा आना, दूध पटाखा खाना, मीठी लोरी गाना, बिस्तर में सो जाना। थैंक यू एवरीवन।
0: और साथ में एक और बच्ची है, आपका नाम क्या है?
3: अनायका देव।
0: और किस क्लास में आप पढ़ते हो?
3: LKG।
0: क्या सुनाने वाले हो ये जल्दी से बताइए।
3: वन लिटिल फ्लावर, वन लिटिल बी, वन लिटिल ब्लू बर्ड हाई इन द ट्री, वन लिटिल ब्राउन बेयर स्माइलिंग एट मी। थैंक यू एवरीवन।
1: और आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए।
4: मानविक सोनी।
1: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
4: UKG।
1: और क्या सुना रहे हैं आज?
4: सूरज।

0: निकला मीठा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। थैंक यू।
1: अनामिका जी, एक और बच्ची इंतजार में खड़ी है, नाम सुनते हैं।
2: आकांक्षा कुमारी।
1: और आकांक्षा किस क्लास में पढ़ती है?
2: UKG।
1: और क्या सुना रही है आज?
2: डेवी ना जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी अ लायन लुकिंग एट मी, ओ डियर मिस्टर लायन व्हाट डू यू सी, आई सी अ लायन लुकिंग एट मी। थैंक यू।
1: आपका नाम क्या है?
3: सुजांश।
1: और किस क्लास में पढ़ते हो?
3: नर्सरी।
1: तो चलिए अपना पोएम सुनाइए।
3: देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है आम फलों का राजा। थैंक यू।
1: आम फलों का राजा है। और आप बताइए, आप क्या सुनाएंगे?
4: हाथी राजा।
1: आम फलों का राजा के बाद हाथी राजा।
5: हाथी राजा।
1: नाम बताइए अपना।
4: आरब सोनी।
1: फिर से बताइए।
4: आरब सोनी।
1: और किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या सुना रहे हैं, सुनाइए।
4: हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, चूल उठा कर कहाँ चले, मेरे घर पर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर।
1: कुर्सी बोली चटर पटर। हम तो अब छोटे बच्चों के बाद हम बढ़ते हैं थोड़े बड़े बच्चों के पास, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या लेकर आए हैं।
5: बिल्कुल।
1: तो नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति के बाद नहमता आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में।
5: बिल्कुल। और यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं ग्रुप सॉन्ग लेकर, तो आप सभी क्या सुनाने वाले हैं? तो चलिए सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना नाम और क्लास बताइए।
6: राजा कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
7: स्नेहा शर्मा फ्रॉम क्लास 6।
8: कश्यप कैसर फ्रॉम क्लास 6।
9: वैष्णी कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
10: प्रियांशी मेहता फ्रॉम क्लास 6।
11: समृद्धि कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
12: अनुष्का रानी फ्रॉम क्लास 6।
13: दीपिका कुशवाहा फ्रॉम क्लास 6।
14: जया कुमार फ्रॉम क्लास 6।
15: लवली कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
16: सबा परवीन फ्रॉम क्लास 6।
17: सृष्टि कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
18: अलीजा फिरदौस फ्रॉम क्लास 6।

0: और नहमता, इस देशभक्ति गीत के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता, जागरूकता और सुंदरता की मिसाल की कहानी लेकर तैयार है एक बच्ची, इससे पूछते हैं ये नाम इनका। आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही है।
1: मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं हमारे देश की एक ऐसे गाँव के बारे में बताऊंगी जो स्वच्छता, जागरूकता एवं सुंदरता की मिसाल है। तो आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मामलिन नांग गांव, जो मेघालय में स्थित है, इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यहां प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता और यहां की आबादी 100% साक्षर है। यह गांव महिला सशक्तिकरण

0: की मिसाल है। यहाँ पर बच्चों को माँ का उपनाम मिलता है और पैतृक संपत्ति माँ द्वारा घर की सबसे छोटी बेटी को दी जाती है। यह गांव इतना सुंदर है कि इसे भगवान का बागीचा भी कहा जाता है। मावलीनांग गांव मेघालय की राजधानी शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। मावलीनांग को 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि से सम्मानित किया गया। कई लोग इसे दुनिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहते हैं। यहां की जनसंख्या लगभग 500 है, जिसमें लगभग 95 खासी जनजातियां परिवार रहते हैं। स्वच्छता के लिए मशहूर मावलीनांग गांव में पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक है। इतना ही नहीं, यहाँ हर कोने में बांस के बने कचरादान भी होते हैं। आवारा जानवर तो क्या, यहाँ पेड़ों से गिरे पत्ते तक सड़कों पर नजर नहीं आते। इस गांव के रास्तों के दोनों ओर पर फूल पौधों की क्यारियां हैं और वहाँ स्वच्छता का निर्देश देने वाले बोर्ड भी लगे हैं। गांव के हर परिवार का एक न एक सदस्य यहाँ की सफाई में भाग लेता है। यदि कोई ग्रामीण स्वच्छता अभियान में भाग नहीं लेता है तो उसे घर पे खाना नहीं दिया जाता। सुनने में आता है कि 1988 के आसपास यहाँ हर मौसम में महामारी फैली थी, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए रिशोद खोक थोरम नाम के एक शिक्षक ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। पहले तो उन्हें इस मुहिम को लेकर काफी संकोच हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए इसे पूरी तरह से अपना लिया। स्वच्छता के लिए एक समिति का गठन हुआ और इस तरह यह गांव के लिए एक अभियान बन गया। मावलीनांग गांव के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक द स्काई व्यू है, जो काफी खूबसूरत स्थान है। इस दृश्य को देखने के लिए एक टावर बना है जो 75 फीट ऊंचा है और पूरी तरह से बांस का बना है। गांव भारत बांग्लादेश देख सकते हैं। इस स्थान का प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो बदले में आपको एक अमूल्य अनुभव प्रदान करता है। तो आइए आज हम और आप मिलकर एक संकल्प लें कि हम भी अपने भारत को मावलीनांग की तरह स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, इस बच्ची ने तो सबको सिखा देने वाला
2: जो एक स्टोरी था वो हम लोगों को बताया, और ये एक रियल स्टोरी था और जिस गांव के बारे में बताई, बहुत ही स्वच्छ और सुंदर गांव है। तो कल्पना में ही लगता है कि कितना स्वच्छ और सुंदर।
1: तो करना चाहिए हम लोगों को भी अपने जगह को ऐसा, और ये हम खुद कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथों का चीज है।
2: अच्छा, यहाँ पे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आइसक्रीम या लेस कुरकुरे कुछ भी अगर खाते हैं तो वो रैपर को कहाँ फेंकते हैं?
3: डस्टबिन।
2: जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी आदत है।
1: जब हम खा रहे हैं तब तो फेंके, कहीं आते जाते भी अगर हमारे साथ उस तरह का कुछ कचरा हो तो वो हम इकट्ठा करें और उसे डस्टबिन में ही डालें। ऐसा हम सबको करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? तो अब आगे बढ़ते हैं, और गाना भी हम लोगों ने सुना, ये एक बहुत बड़ी सीख लोगों को मिली। अब पोयम सुनते हैं, कुछ बच्चे कविताएं लेकर तैयार हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आप आगे आइए।
4: तुन हमता पर्यावरण को स्वच्छ तो रखना है, तो और पर्यावरण के लिए हमें पेड़ भी बचाना है, तो इसी से संबंधित एक कविता लेकर तैयार है। आप अपना नाम बताइए और सुनाइए।
5: मेरा नाम है सृष्टि कुमारी, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा शिक्षक है पेड़ न कटने देंगे, 200 पेड़ कटे जंगल में उजड़े पूरे 100 परिवार, लेकर खबर भयानक आया जंगल में ताजा अखबार, भालू ने अखबार देखकर किया एक ऐलान, सुनो जंगल की यह खबर ध्यान से सुनो सभी श्रीमान सुनो, बहुत बढ़ गया मानव का जंगल पर अत्याचार, कितने हरे पर कटे और कितने उजड़ गए परिवार, अब हम पेड़ न कटने देंगे यही हमारा नारा है, हरे पेड़ जंगल की शोभा यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।
2: पेड़ ना कटने देंगे, और इतनी अच्छी कविता के बाद आगे बच्चे क्या लेकर है, क्या सुना रहे हैं?
6: बिलीव इन योर सेल्फ।
2: आपका नाम?
6: माई सेल्फ वर्षा फ्रॉम क्लास 9।
2: तो चलिए स्टार्ट कीजिए।
6: स्टेप अप टू द चैलेंज, देर इज नो क्राउड टू सी, इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर एंड वेयर यू वॉन्ट टू बी, विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर, डिफिकल्ट आर चॉइसेस व्हेन द फ्यूचर इज गेटिंग नियर, देर इज सच ईज इन कम्फर्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यो, बट दिस इजंट व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इजंट हाउ वी ग्रो, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट एज वी ऑल नो, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, देर इज नो टर्निंग बैक, यू जस्ट need to believe in yourself for your future to be on track. This poem was written by Robert Langley.

0: और आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए।
1: दिस इज सुहानी फ्रॉम क्लास 9th। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोम, कैनवस ऑफ सॉइल, पेटल ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर स्लीप, ब्रेस्टोक ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, अ वेटिंग स्प्रिंग, व्हाई डिडंट यू ब्लॉसम ब्लो, अ पेंटेड साइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। It is written by Maya Antony. Thank you.
0: और अब प्रोग्राम में एक बच्ची तैयार है स्वरचित कविता सुनाने के लिए, सुनते हैं इनसे।
2: मेरा नाम आराध्या सिन्हा है और आज मैं खुद से लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है मैं नक्शा नहीं नहीं रहा हूँ। मैं कल की कोई आस नहीं, मैं आने वाली कल की आवाज हूँ। मैं भीड़ में चलने वालों में नहीं, मैं भीड़ बदलने की आगाज हूँ। मैं लहर नहीं जो रुक जाऊं, मैं दरिया हूँ जो बहती जाऊं। मैं किस्मत लिखी हुई पढ़ती नहीं, मैं किस्मत खुद की लिखती हूँ। लोगों ने कहा इतना ऊंचा क्यों सोचती हो, मैं हंसकर बोली क्योंकि मैं जमीन नहीं क्षितिज तक देखती हूँ। मैं मंजिल की मोहताज नहीं, मैं मंजिल की पहचान हूँ। मैं एक नाम भर नहीं, मैं अपने सपनों की उड़ान हूँ। मैं डर से सौदा करती हूँ, मैं हिम्मत का व्यापार करती हूँ। आज मेरी आवाज छोटी है, कल ये गूंज बन जाएगी। आज जो एक कहानी लगती है, कल मिसाल बन जाएगी। और जब कोई पूछेगा तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है, मैं मुस्कुरा कर कहूंगी मैं दुनिया बदलने निकली हूँ, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पे अपने अध्याय लिखने निकली हूँ, अपने अध्याय लिखने निकली हूँ। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, इतने अच्छे से कविता के बाद। और कुछ बच्चियां यहाँ पे खड़ी है, भजन सुनाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना नाम और क्लास बताइए।
3: मेरा नाम साक्षी कुमारी है।
4: मेरा नाम अदिति राज है।
5: मेरा नाम सुहानी कुमारी है।
6: मेरा नाम वर्षा कुमारी है।
7: मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है।

0: और अब इस भजन के बाद थोड़ा माहौल को बदलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सुनते हैं चुटकुला। आप आगे आइए।
2: सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम फैसल खैरी है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं आपके समक्ष एक चुटकुला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक अध्यापिका ने एक छात्र को 1 से 10 तक की गिनती सुनाने को बोला तो छात्र ने क्या कहा? छात्र ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो अध्यापिका ने कहा 9 कहा गया? तो छात्र ने कहा आज सुबह टीवी पे खबर आई कि ठंडी के कारण बुखार से हुई 9 की मौत।
0: हंसी आई तो खुलकर हंसिए।
1: तो यहाँ पे 9 की मौत हो गया, इसलिए
0: गायब हो गया
1: 9।
0: और अब आप लोग अपना

0: नाम बताइए और क्या सुना रहे हैं।
1: मेरा नाम है माया रानी, मैं कक्षा पांचवी की छात्रा हूँ।
2: मेरा नाम है जिया खाना, मैं कक्षा पांचवी की छात्रा हूँ।
0: सुनाइए।
1: एक टीचर ने परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस क्या है। एक स्टूडेंट ने 3 पेज खाली छोड़कर 4वें पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस है। टीचर, टोकरी में कितने आम हैं?
2: मैम 10।
1: वो कैसे?
2: जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी ना बन जाएंगे।
0: कुछ लोगों को लगता है बाद में भी हंसी आ रही है।
3: हाँ।
0: आगे
2: यह बताओ कि दुनिया में कितने देश हैं?
1: कर दी ना पागलों वाली बात, दुनिया में बस एक ही देश है भारत, बाकी सब तो विदेश है। धन्यवाद।
0: और अब चुटकुला के बाद आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही है बताइए।
4: आई एम मिस्टी फ्रॉम क्लास 4। आई एम गोइंग टू टेल अ नाइस स्टोरी, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। अ बोर्ड शेफर्ड बॉय डिसाइड्स टू ट्रिक द विलेजर्स बाय शाउटिंग दैट अ वुल्फ इज अटैकिंग हिज शिप। द विलेजर्स रश टू हेल्प बट फाइंड नो वुल्फ। अम्यूज्ड, द बॉय रिपीट्स द ट्रिक। व्हेन अ रियल वुल्फ अपीयर्स, ही क्राइज फॉर हेल्प, बट विलेजर्स थिंक he is joking again and ignore him. The wolf attacks the flock and the boy learns a hard lesson. Moral of the story is lying breaks the trust. Thank you.
5: मेरा नाम अनाबिया अनम है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक सीख की कहानी सुनाने जा रही हूँ, बंदर और चिड़िया। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। एक बार बहुत तेज बारिश आई, बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से थर थर कांपने लगा। चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, वह जरा भी नहीं भीगी। चिड़िया ने बंदर से कहा कि यदि वह भी घर बना लेता तो उसे बारिश में नहीं भीगना पड़ता। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। चिड़िया ची ची करते हुए रोने लगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है। धन्यवाद।
0: और आप दोनों अपना नाम बताइए।
6: मैं श्रेयाश्री।
7: मैं नैन्सी कुमारी।
0: क्या सुना रही हैं?
7: कविता।
0: सुनाइए।
8: इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ सिंचित है यह स्मृति साला सी। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चीता पर चमक उठी ज्वालासी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निश्चित में शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमित कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
0: तो आप क्या सुना रही है? इंग्लिश पोएम ना?
9: जी दीदी।
0: तो चलिए आप अपना नाम बताइए और स्टार्ट कीजिए।
9: दिस इज मीत्रॉय। लाइफ गेम अ लिटल या टेस्टेड मी ईच डे, ड्रीम्स मेड स्टॉर्म्स बट आई फाउंड माय वे। मैनी हेल्ड माय हैंड ऑनली व्हाइल टाइम्स वर ब्राइट, बट व्हेन शैडोज गैदर्ड दे फेडेड फ्रॉम माय साइट। ब्रोकन ट्रस्ट टॉट मी टू स्टैंड ऑन माय ओन, थ्रू एवरी सेटबैक my courage had grown. Today, I don't follow the road others see. With hope in my heart, I write my own destiny. Thank you.
0: आप आगे आइए, अपना नाम बताइए।
10: मैं नन्नी कुमारी।
0: क्या सुना रही है?
10: शूरवीर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमय नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में रह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव अकड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, रतिक का बीच उज्जाली हो। बाती जो

0: ही जलाता है, रोशनी नहीं हुआ पाता है, यह कवि लिखी गई है राजधारी सिंह दिनकर के द्वारा।
1: आप लोग आगे आइए और आप मिलकर क्या सुना रही हैं बताइए।
2: तिरंगा।
1: ये ग्रुप सॉन्ग है
2: जी।
1: सुनाइए।

0: इस देशभक्ति समूह गीत के बाद एक देशभक्ति कविता लेकर तैयार हैं। आप अपना नाम बताइए।
1: दीपिका कुशवाहा।
0: सुनाइए।
1: वीरों की कुर्बानी, खो ना जाए काल गुहा में, हो ना जाए बात पुरानी, आओ फिर से दोहराएं हम रणवीरों की कथा कहानी, युगो युगो तक याद रहेगी उनकी हर कुर्बानी, आओ फिर से दोहरा ले हम उन वीरों की अमर कहानी, आंधी ओले तूफानों में अंगद जैसे खड़े रहे, गोली की बौछारे झेली अंत सांस तक अड़े रहे, कापा भागे दुश्मन जिनके उद्घोषी ललकारों से, गूंज उठी हर चोटी जिनकी हुंकरो जयकारों से। शशि पाद।
2: बच्चों, अंत में एक प्यारी सी बात, फूल चाहे छोटा हो या बड़ा अपनी खुशबू सबको देता है।
3: ठीक वैसे ही हमें भी अपने अच्छे व्यवहार, सच्चाई और प्यार से सबका दिल जीतना चाहिए।
0: और नम्रता, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम फुलवारी का समय तो समाप्त हो रहा है।
4: बिल्कुल अनामिका,
0: बच्चों से विदा ले ले।
4: बिल्कुल।
0: जय हिंद बच्चों।
5: जय हिंद।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी। आज आपने सुना मणिपाल स्कूल हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। संकलन एवं वाचन था नामिका और नहांता प्रवीण का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 7:58 हो चुके हैं। थोड़ी देर में 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक और 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोता आप सुन सकेंगे 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया इन सभी के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।

0: तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान टुडे। यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा रिव्यूज प्रिपेयरेडनेस फॉर नीट पीजी 2026 एग्जामिनेशन, अर्जेस एस्पिरेंट्स नॉट टू फॉल प्रे टू रूमर्स। तेलंगाना पुलिस रेस्क्यूज ओवर 6000 चिल्ड्रन इन अ मंथ लॉन्ग ड्राइव एम्ड एट एंडिंग चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग। फ्लड सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी ग्रिम इन गुजरात, ओडिशा एंड केरलम। वेदर डिपार्टमेंट इश्यूज रेड अलर्ट फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात टुडे। U.S. President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
2: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak's, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth becomes a driving force only when they find the right opportunities and the right direction to dream big with confidence to realize their goal. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak, in Mysuru, Karnataka yesterday. The Prime Minister highlighted that today the youth in India are leading the world's third largest startup ecosystem, Atmanirbhar Bharat Mission and Make in India initiative.
3: आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है।
1: यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा हैज रिव्यू द प्रिपेयरनेस फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2026 टू इंश्योर द स्मूथ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कॉन्डक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। द एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 30th ऑफ दिस मंथ। अ रिपोर्ट।
4: During the meeting, the minister assessed the preparedness of the National Board of Examination in Medical Sciences, technology partners and other stakeholders involved in conducting the examination. He was briefed on examination logistics, candidate facilitation measures, the security architecture and the technology-driven interventions introduced for NEET PG 2026. The minister stressed

0: प्रधानमंत्री आज करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ। रांची सहित देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से जुड़ेंगे युवा। भारतीय दूतावास और राज्य सरकार के सहयोग से प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी, आज पहुंचेगी झारखंड। झारखंड में सेरेब्रल मलेरिया का प्रकोप, सीआरपीएफ के 4 और जवान संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। यूपीएससी की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा आज, रांची के 3 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर, मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण और 17 रजत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अभियान के तहत झारखंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रांची के वाईबीएन विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ओमान में फंसी सिमडेगा की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की गई है। राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास मस्कट के सहयोग से उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी कराई। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह आज झारखंड पहुंच रही हैं। पूर्वी सिंहभूम में सीआरपीएफ के 4 और जवानों में सेरेब्रल मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इससे पहले एक जवान की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। वहीं पटमदा प्रखंड के एक गांव में भी मलेरिया के 4 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 3 सेरेब्रल मलेरिया से संक्रमित बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और उपचार अभियान चला रहा है।

दिल्ली में संयुक्त अभियान के दौरान झारखंड की वांछित मानव तस्कर महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एक स्वयंसेवी संस्था की कार्रवाई में खूंटी जिले की मानव तस्करी की शिकार एक बालिका का भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल की विशेष जांच टीम ने जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल से कथित संबंधों के मामले में साहिबगंज की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी बरहड़वा थाना पुलिस के सहयोग से की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं। मामले की जांच जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, श्रावण आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा आज रांची के 3 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए प्रशासन ने केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अभ्यर्थियों ने धनबाद में आक्रोश मार्च निकाला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता विनोद महतो ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: जिस तरह से कर्नाटका में, जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से झारखंड में पेपर लिख हुआ है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ शिक्षा मंत्री खुद हेमंत सोरेन ने इनको खुद अपने आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पेश किया है, आप भी यहाँ पेश।
2: इधर राज्य आदिवासी छात्र संघ ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन के पीछे सुनियोजित साजिश होने का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के केंद्रीय संयोजक डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि परीक्षा संबंधी मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।
4: जेपीएससी और जेएसएससी का जो मामला यहाँ पर चल रही है और इतनी ज्यादा हाय तोबा मचाई जा रही है, इस देश के अनेक राज्यों में अनेक बार पेपर लीक हुई है। एक षड्यंत्र के तहत भाजपा और विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थीगण और हमारे राजधानी में जितने भी कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे मालिकों के द्वारा इस प्रकार की प्रोपोगंडा किया जा रहा है।
2: गिरिडीह पुलिस ने पाम ऑयल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गोदाम से पाम ऑयल चोरी के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई की।
5: 246 टीना पाम ऑयल चोरी की घटना ह्यूमन इंट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य की गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है और बरामदगी भी हुई है। तो इसमें और भी जो अभियुक्त है उनकी भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई है। आने वाले दिनों में वैसे अभियुक्तों पर भी छापेमारी की जाएगी।
2: मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 दिनों

तक भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। भारत के खाते में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। मुक्केबाजी में भारत ने रिकॉर्ड 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। वहीं पैरा एथलेटिक्स और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदक जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर, स्वर्णिम शनिवार, 8 गोल्ड से दमका भारत। हिंदुस्तान की लीड है, युवाओं के योगदान से आगे बढ़ रहा देश, मोदी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, कड़ी सजा और जुर्माना। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एसटीएफ की कार्रवाई, जैश के संदिग्ध आतंकी साहिबगंज से गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ। रांची सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से जुड़ेंगे युवा। भारतीय दूतावास और राज्य सरकार के सहयोग से प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी, आज पहुंचेगी झारखंड। झारखंड में सेरेब्रल मलेरिया का प्रकोप, सीआरपीएफ के 4 और जवान संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। यूपीएससी की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा आज, रांची के 3 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर, मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण और 17 रजत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव

0: convert into a big dispute. So this is the first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो एड्रेस करे. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज, कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेलियर हो जाए सेटलमेंट. अब कॉन्सुलर ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member ट्राइब्यूनल। पहले केवल 1-member ट्राइब्यूनल था, अब हमने बना दिया है 2-member ट्राइब्यूनल, और जिसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन,

आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसिलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2 मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाते जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, ESI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, तो आपका 80% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा, इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPF और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। तो इसमें भी 2 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कंपिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है जो वर्कर्स
जिस

0: new labour codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment. This talk was part of a webinar organised by the Department of Justice.
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का भाग संख्या 4। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पीकू फिल्म का गीत, इस गीत के कलाकार जो हैं गायक कलाकार, संगीतकार और गीतकार अनुपम रॉय हैं।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना।
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने

0: पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म का गीत कमाल खान और नीति मोहन के युगल स्वरों में, कौसर मुनीर का लिखा गीत है, विशाल शेखर की बनाई तर्ज पर।

श्रोताओं, आज 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। और हम आपको आगे बता देते हैं कि 10 बजे आप पिटारा के अंतर्गत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2 प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और आज सुबह 11 बजे विविधा में सृजन भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न संपादित अंश सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह, और इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान का गाया, जयदीप साहनी के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम को 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की, रूपांतर जौहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों की। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीसरा आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, जतिंदर शाह का संगीत।

कुणाल गांजावाला और गायत्री गांजावाला की आवाजों में अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है माय फ्रेंड पिंटो।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज आपके साथ थी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी के संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे न जाओ शाम पैया परू बीच धारे न जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए पेश है।

0: को देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

हर मोड़ पर तेरा साथ चाहिए, हर लम्हा तुझसे बात चाहिए, जिंदगी हो चाहे जैसे भी, तुझ जैसा दोस्त हर बार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जोहार, गुड मॉर्निंग। एफएम 92.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हाजिर हूँ मैं वंदना श्रीवास्तव, लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हजारीबाग। दोस्तों आज है सजीला स्वर्णिम संडे और अगस्त का ये पहला संडे हर वर्ष मनाते हैं फ्रेंडशिप डे के रूप में। तो चलिए आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं वो गीत जो अमर गीत है हमारे और एफएम 92.1 मेगाहर्ट्ज़ के लाखों श्रोताओं के दोस्ती के नाम, क्योंकि 8 नवंबर 1992 से लगातार 33 वर्षों से हम निभा रहे हैं आपके साथ दोस्ती। तो चलिए इस अटूट दोस्ती के नाम कार्यक्रम में सबसे पहले आपके लिए ये गाना।

दोस्तों सच में आया है मौसम प्यार का, ये मौसम है दोस्ती का, ये मौसम है हरियाली का, ये मौसम है अपनापन का, ये मौसम है श्रवण का, भोलेनाथ का, ये मौसम है अपने बरसात का। तो दोस्तों ऐसे में आज हमारे शहर हजारीबाग का मौसम कैसा रहेगा, क्या कहता है फॉरकास्ट, चलिए हम आपको बताते हैं। मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि आज हमारे शहर हजारीबाग का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। दिन में तपिश बनी रहेगी लेकिन ये तपिश सुकून में बदल जाएगी जब संध्या में रिमझिम बारिश की फुहार होगी। तो बस इस रिमझिम मौसम का मजा लीजिए और अपनी दोस्ती का जाम लीजिए, ऐसे अपने दोस्तों के नाम।

तो दोस्तों, दोस्ती की ये बयार आज पूरे हजारीबाग में बस बहती रहेगी। आप बने रहिए इस पल हमारे संग, क्योंकि हेलो हजारीबाग रेडी है इस वक्त आपको आज के सुविचार से रूबरू करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के सुविचार की ओर।

दोस्तों हेलो हजारीबाग आज कहता है आप सभी से कि दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो विश्वास, साथ और बिना किसी स्वार्थ के प्यार की नींव पर टिका होता है। यह जीवन के सफर को आसान और खुशनुमा बना देता है। इसलिए दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह की मित्रता हो। सच्ची दोस्ती में ना तो कोई स्वार्थ होता है ना कोई दिखावा होता है। इसलिए सच्चा मित्र वही है जो आपके जीवन में कृष्ण बनकर आए और सुदामा बनकर साथ निभाए। बिल्कुल इस तरह।

दोस्तों, अगर बातें करते हैं दोस्ती की, तो दोस्ती हमें केवल दोस्त से नहीं बल्कि अच्छी किताबों से करनी चाहिए, अपनी जिंदगी से करनी चाहिए, इस पर्यावरण से करनी चाहिए जिसके चलते हमारा अस्तित्व है। हमें दोस्ती अपने माँ पापा, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों से करनी चाहिए। हमें दोस्ती इस माटी से करनी चाहिए जिसका तिलक लेकर हम जी रहे हैं। हमें दोस्ती अपने देश से करना चाहिए जिसके अस्तित्व पर टिका है हम तमाम भारतवासियों का अस्तित्व। इसलिए आइए आपको सुनवाते हैं एक ऐसे वीर की कहानी, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जिन्होंने अपने देश से प्यार किया, अपने देश से दोस्ती किया था।

स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, ये नारा है श्री बाल गंगाधर तिलक का, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तिलक गरम दल के नेता थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। जिस समय तिलक का जन्म हुआ, उस समय पूरा देश धू धू कर जल रहा था। गुलामी की जंजीर से अंग्रेजों ने कस कर रखा था अपने देश भारत को। दोस्तों, जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल बची, तो ये आग की तरह धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैलती गई। लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज तेज करने लगे और इसी माहौल में पले बढ़े बड़े हुए हमारे तिलक साहब। गांधी जी के प्रभाव से तिलक स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और अपने देश से दोस्ती कर इसे अपने अंग्रेजों के बंधन से मुक्त कराकर अपना बनाने के लिए उन्होंने जिहाद छेड़ दी। गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में तो कूदे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में 1908 से 1914 तक म्यांमार की मंडले जेल में 6 साल की सजा दी, जहां उन्होंने गीता रहस्य लिखा। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से धीरे धीरे जन जागरूकता शुरू की और कई उत्सवों का आयोजन कर लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी।

स्वराज का नारा देकर तिलक जी ने अंग्रेजों के सामने पूर्व स्वराज की मांग रखी और देशवासियों में यह विश्वास जगाया कि स्वतंत्रता उनका अधिकार है और वो लेकर रहेंगे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय शांति के जनक मानते थे, लेकिन तिलक कभी नहीं हारे न झुके अंग्रेजों के सामने। जनता को एकजुट करने के लिए और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया और तब लोग एक एक कर संगठित होने लगे ऐसे ही पर्व त्योहारों के नाम पर। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विद्यालय का गठन किया, साथ ही साथ कई कॉलेज खोले ताकि हमारे युवा पढ़े लिखे और जागरूक बने, अंग्रेजों के खिलाफ उनके इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो। उन्होंने समाचार पत्र लिखे, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र लिखे और इसके जरिए लोगों को, देशवासियों को जागरूक बनाने का लगातार कोशिश किया। होम रूल लीग आंदोलन की भी शुरुआत उन्होंने ही की। 1916 में तिलक एनी बेसेंट के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग को गति देना था। तिलक धीरे धीरे कर पूरे देश में जागरूकता की लहर दौड़ा चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था और धीरे धीरे कर वो अस्वस्थ होते गए। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने अपने को इस देश के नाम कर दिया, उनका देहांत हो गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस भी अपने देश की सेवा में लुटा दी।

आइए दोस्तों, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम, और चूंकि अगस्त का महीना है, सभी की रगों में देशभक्ति का जोश और उबाल ऐसे ही भर जाता है। तो ऐसे में हम हेलो हजारीबाग की ओर से सुनवाते चलते हैं आपको ये न्यारा सा गीत।

हेलो हजारीबाग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त वंदना श्रीवास्तव। दोस्ती करो अपने देश से, कुर्बान करो अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें से भी देश के लिए, ऐसा कहते थे हमारे वो दीवाने स्वतंत्रता सेनानी जिनके बदौलत आज हम सब आजादी का ये जश्न मना रहे हैं। और अब दोस्तों वक्त हो गया है कि आपको देश और विदेश की प्रमुख घटनाएं जो घटी थी 2 अगस्त को उनसे रूबरू कराने के लिए चलते हैं अब आपको अपने FM सेट पर।

हर दिन की तरह 2 अगस्त भी अपने साये में सिमट कर रखा है। ढेर सारी यादें और घटनाएं, चलिए एक एक परत का दर परत हम खोलते हैं। 2 अगस्त 1990 इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार किया गया था एवं वहां के अमीर का सऊदी अरब पलायन हो गया था।

अगर 1999 चीन में लंबी दूरी 8000 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया था। 2 अगस्त 2001 पाकिस्तान से भारत से चीनी आयात को मंजूरी मिली थी और 2 अगस्त का ही दिन था जब 2003 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाइबेरिया में संघर्ष विराम लागू करने के लिए सेना भेजने की अनुमति दी थी। दो अगस्त 2004 याद किया जाता है कि अमेरिका की लिंडसे ड्यूनपोर्ट ने रूस की मिस्किनी को हराकर सान डियागो टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीत लिया था। पराग्वे की राजधानी आसुनियोसियोन में एक सुपर बाजार में आग लगने से आज के दिन 300 लोग मारे गए थे। 2 अगस्त 2007 याद आता है जाफना के दक्षिणी द्वीप कियुसु में सुबह आए भयानक तूफान उगासी ने व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई थी जान माल की। 2 अगस्त 2012 लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे जिसमें 2 रजत पदक और 4 कांस्य शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में 55वें नंबर पर आया था। पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा था जिसने 104 पदक जीते थे।

2 अगस्त को दोस्तों बहुत सारे महान हस्तियों का जन्म भी हुआ। चलिए बारी बारी से हम आपको बताते हैं। 2 अगस्त 1876, साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर हमारे पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश में आज के दिन हुआ था। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। 2 अगस्त 1861 को प्रफुल्ल चंद्र राय, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी माना जाता था, उनका भी जन्म हुआ। 2 अगस्त 1878, पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक थे, उनका जन्म हुआ था, जिसके बारे में हमने बताया। इसके साथ ही साथ 2 अगस्त 1877 को रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका भी जन्मदिवस है आज। अगस्त 1955, धीरेन्द्र अग्रवाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, उनका जन्म हुआ। 1956 को विजय रूपाणी, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। आप सभी को जन्मदिन की हेलो हजारीबाग की ओर से ढेरों शुभकामनाएं।

तो दोस्तों आपके साथ हेलो हजारीबाग का ये सफर कट चुका है। 10:29:41 हुए, हमारी घड़ी की सुइयां बजा रही हैं और पूरे आधे घंटे हमने बिता लिया आपके साथ। तो दोस्ती का ये बांध, दोस्ती की ये मजबूती बनी रहे, हम आपके बीच आते हैं फिर से एक नए जोश के साथ। फिलहाल ये संदेश आप तक।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो हजारीबाग में FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त वंदना, जिसने किया है आपसे दोस्ती लंबे सफर में, और इस 3 दशक में हमने आपसे कई फसाने बांटे हैं एक दूसरे के साथ, मिलकर गुजारे हैं जिंदगी के कई पहलू। तो आपके साथ बिताए जिंदगी के कुछ पहलुओं की मीठी यादें इस गीत के साथ आइए मिलकर गुनगुनाते हैं अपने FM 102.1 मेगाहर्ट्ज के साथ।

दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद वही है जिसके पास एक सच्चा मित्र है, जो उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो सच्चा मित्र भी धोखा दे जाता है। ऐसे में दिल नहीं बल्कि जिंदगी टूट सी जाती है। लेकिन हमें वैसे लोगों से दोस्ती करना है जो खास नहीं बल्कि हमारे दोस्त बनकर खास बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, में ऐसी दोस्ती करते हैं एक बार फिर से एक नई ताजगी के साथ, जिसे निभाएंगे अंतिम दम तक।

दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार की आज की हाइलाइट्स है, जो हेडलाइन है वो है कि भारत पर सोने की बारिश। मुक्केबाजी में प्रीति, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया और अरुंधति ने शॉर्ट पुट में सोमन को स्वर्ण पदक दिलाया। ये कहते हैं दोस्तों कि आज हमारे हर अखबारों में अगर खबर है तो इस स्वर्ण पदक की, स्वर्ण शनिवार की। साथ ही एक खबर है प्रभात खबर में, हेडलाइन की प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच अब डिग्री घोटाले की भी आशंका है। चयनित 33 महिला पर्यवेक्षिकाओं की डिग्री एक ही निजी विश्वविद्यालय की है, सत्रवांक में एक रूपता नहीं है, इसलिए इसकी भी जाँच शीघ्र कराएगी हमारी झारखण्ड सरकार। प्रभात खबर ने एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ ये खबर हाईलाइट किया है कि स्वर्णिम शनिवार, 3 स्वर्ण से दमका भारत। प्रीति, जैस्मीन के पंच और राणा के थ्रो ने बढ़ाई हमारे देश की साख।

दोस्तों, अगर स्थानीय खबरों की बातें करें तो एक खास खबर धूम मचाई है पूरे हजारीबाग शहर में। कल का दिन बहुत ही खास था। 1 अगस्त को हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड पर एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की स्थापना की गई।

गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और उसमें बच्चों की काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग किया हमारी आईएएस प्रोफेसर पूर्वा अग्रवाल और साथ ही साथ उनके साथ ही डीडीसी रिया सिंह, साथ ही उनका साथ दिया बच्चों की इस काउंसलिंग में हमारे आदरणीय उपायुक्त हजारीबाग हेमंत सती जी ने। डीसी हजारीबाग ने आश्वासन दिया है बच्चों को कि अब हमारा हजारीबाग जो पहले से ही एजुकेशन हब है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्षेत्र में परचम लहराएगा क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खुल जाएगी 15 अगस्त को। ये हमारे हजारीबाग के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की।

डीसी हजारीबाग ने कहा है कि नियमित अभ्यास से मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। इस मूल मंत्र के साथ हमारे हजारीबाग के युवाओं का उन्होंने हौसला अफजाई किया। कल यानी 1 अगस्त डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में और दोस्तों हमारे एक अखबार की सुर्खी ये भी है कि कलाकारों ने दिया रफी साहब को अमर सदाबहार गीतों के साथ श्रद्धांजलि।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हेलो हजारीबाग, अब एक खबर आप सब के लिए जो बहुत ही जरूरी है, और ये खबर है सड़क सुरक्षा और हमारे व्यवस्था पर। दोस्तों, हमारे शहर हजारीबाग के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। यातायात का उल्लंघन करते 163 लोग पकड़े गए, काटा गया चालान और दी गई उन्हें एक सख्त चेतावनी। बताते चले दोस्तों कि हजारीबाग शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस। इसके शहर के विभिन्न चौराहा का चयन कर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत एसपी अमन कुमार के निर्देश पर पीटीसी चौक पर व्यापक वाहन चेकिंग अभियान कल चलाया गया, जहां विभिन्न तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए 163 लोग पकड़े गए, जिन्हें चालान काटकर छोड़ा गया और कहा गया कि हेलमेट जरूर लगाए, चलाते वक्त कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, कभी भी हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, कभी भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं और अपनी गाड़ी हमेशा पार्किंग में ही पार्क करें। तो दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे तो दोस्ती करने के लिए तुम्हें दोस्ती करनी होगी पहले हेलमेट से, दोस्ती करनी होगी तुम्हें अच्छी ट्रैफिकिंग से, दोस्ती करनी होगी तुम्हें ट्रैफिक लाइट से, और फिर दोस्ती करनी होगी, सच्ची मित्रता करनी होगी अपनी जिंदगी से, तभी हम आप सभी के काम आ पाएंगे। तो चलिए, इन ट्रैफिक पुलिसों के नाम हम अपने कार्यक्रम की ओर से प्रसारित कर रहे ये गीत।

और दोस्तों चलते चलते अब आइए हम अपने कुछ साथियों एफएम के श्रोताओं के खत उठाते हैं जिन्होंने बड़े प्यार से आज के दिवस पर हमारे एफएम के लिए अपनी दोस्ती का ये नजराना भेजा है। आइए उनके इस मुबारक शब्दों को आप तक पहुंचाते हैं आला हजारीबाग के जरिए और आपको सुनवाते हैं उनकी दिल की आवाज। तुझसे ही रौनके सारी, तू है तो हर मौसम में बहार है, तू है तो बस हिम्मत है, तू है तो हर डगर अपना सा लगता है, हर नजारा अपना सा लगता है। दोस्तों ये प्यारी सी पंक्तियां लिख भेजी है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज के लिए पंचपंथी रोड से हमारे साथी कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान हबीबा, इरफान शबाना फिरोज और शबाना परवीन आरजू ने अपनी आकाशवाणी हजारीबाग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के दिवस की हम आपके साथ यूं ही दोस्ती निभाते रहेंगे अपने रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए। एक और बात कही है हमारे आकाशवाणी के लिए हमारे अगले साथी बड़काकाना से डॉक्टर इफ्जाल ताश शाहिद सुल्ताना, उनकी प्यारी बिटिया तस्नीम ने। डॉक्टर अफजाल ताज कहते हैं आकाशवाणी हजारीबाग यानी गीतों का पिटारा, जानकारियों का खजाना। तुझसे ही होती है अपनी हर सुबह, तुझसे ही होती है अपनी हर रात। मुबारक हो तुझे आज का ये शुभ जन्म दिवस, अपने साथ ही साथ जिस दोस्ती को तूने अपनाया है हमारे साथ अपनी जिंदगी में, उस दोस्ती को सलाम। अफजाल ताजी आपके साथ ही ये दोस्ती हमेशा बनाए रखेगा ये एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए। और इस वक्त हेलो हजारीबाग आप तमाम दोस्तों के लिए बस यही कहता है, आई मे नॉट बी ए परफेक्ट फ्रेंड बट ऑलवेज बी हियर व्हेनेवर यू नीड। तो दोस्तों आप जहां हम वहां, और लीजिए इस वक्त आपका साथ निभा रहे हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों यूं ही दोस्ती बनी रहेगी आप संग 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल हेलो हजारीबाग की आज के इस महफिल से दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, आदाब और शास्त्रीय काल। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी के हर पल को अपने नाम करते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:58 और 10 सेकंड हुए हैं। थोड़ी देर में 11 बजे से आप लगातार सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंक।

0: प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत जबरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं, जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं, जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीजों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों ये मंच और ये माइक्रोफोन।
1: नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हम सबसे पहले डॉक्टर सुमति ओझा से हम जानना चाहते हैं। सुमति जी, बताइए कि आजकल लोग समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जैसे इग्नोर कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
2: आपका सवाल बहुत ही एप्ट है। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपना सिक्स पैक दिखाने बहुत आसानी से बाहर निकल के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है
1: जी,
2: तो उसे छिपाते हैं
1: जी।
2: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में, मानती हूँ,
1: और चर्चित
2: और मेरी फेवरेट भी है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है, मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट मीन्स मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए, जिससे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति टू टेल, और ये बताना और पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से, इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओ में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा, ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो, एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसे कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से, इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है, इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
1: बिल्कुल सही कह रही है। अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज्यादा खराब होता है, कमजोर होता है, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं और यही करियर का बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नैन वर्मा जी हैं, तो हम नैन जी से पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना ना पड़े।
3: इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप साइंस लेते हैं, सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं
1: जी।
3: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देर इज नो टर्निंग बैक। तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है। अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं तो 8th 9th 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते तो ऐसा लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसकी फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं।

0: जाते हैं। अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहां तक पहुंच रही है। तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इट इज वेरी सैड पार्ट ऑन अवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की जरूरत पड़े। मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और उसके लिए अपने सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए। अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं, स्फीगोमैनोमीटर यूज कैसे करते हैं, लेजर कैसे यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, CT स्कैन मशीन क्या होती है। ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए।
1: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की जरूरत है।
0: अगेन यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आपको उनका बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करना चाहिए। और अगर उनको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए। तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये डबल प्रेशर है। जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11, 12 के मार्क्स पे एडमिशंस होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे, अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है। हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूं तो 11, 12 का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ है लेकिन बच्चों को मिलते सिर्फ 18 महीने। उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन खत्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है। बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम से। वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते ना वहां के रहते, तो ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तेफाक रखूंगा कि दोनों से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको।
1: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
2: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आई एम श्योर कि काफी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल,
2: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं
1: जी,
2: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो, तो आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग

0: के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं.
1: अच्छा.
0: क्योंकि वो जानते हैं कि देयर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहते हैं. और मैं बच्चों की तरफ हूँ बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज. और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं. वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में. देयर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर. एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे. तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम. वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो. तो आई थिंक समवेयर देयर इज, मतलब वो कहते हैं ना इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है. और आप कहेंगे कि द थ्री इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो. एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये जरूरी है. क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
1: जी.
0: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल्स किट है. हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है.
1: बिल्कुल.
0: देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है. वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है. आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं. आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते. तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है.
1: जी जी.
0: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120. किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है.
1: जी.
0: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ. बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया. He doesn't know कि क्यों मुझे भेजा गया है. और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है. आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो. और अक्सर मैं
1: सही बात है, बिल्कुल.
0: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ
1: जी.
0: कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है. सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस
1: जी.
0: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे
1: जी.
0: आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं और वो नहीं बता पाते हैं.
1: क्या बात है, ये तो
0: वो सोचने लगते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 5 इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए
1: तो
0: दोनों मिलकर शुरू हो जाते हैं
1: बस,
0: कि आपको पता नहीं ये कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है. और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है यू नो. और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है निकल जाएगा. तो मुझे ये करना पड़ता है.
1: तो एक नई बात सामने आई है, सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए. प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं तो नयन जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे.
2: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट बैठे हुए, तो मैं जब तक जानता हूं मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 ईयर्स प्लस 50 ईयर्स प्लस प्रोफेसर हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मैच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे। तो मुझे उसके जैसे बच्चे बन के पढ़ाना होता है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं, डांटते हैं उनका गुस्सा शायद 30 सेकंड का होता है, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकंड में शांत हो जाएंगे, एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई एम योर एकेडमिक फादर। तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूँ, तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूँ, और आई एम श्योर काउंसिलर तक जो कंप्लेंट जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा।
1: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां। ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर?
2: डेफिनेटली है, एग्जांपल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है, मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था। तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया, सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला। पापा एकदम पेट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश। इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था, तो ग्रैंड फादर और फादर हमको बोलते थे कि वेकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो, तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था, तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग। तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है। तो जो बच्चे 8th-9th में भी हैं अभी, और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है, फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है। तो आपका फियर अगर 8th-9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा, फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं, अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे, अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए। आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नयन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पे लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो, तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूं मैं। तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में, और जब आप फिजिक्स लेते हैं, तो आप तभी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, फिजिक्स इज मैथ्स, न्यूटन रोट द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन, आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज प्योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है।
1: क्या बात है, बहुत सही बात कही है, और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे जो दर्शक है उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है वो लॉ कर रही है, और आए अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें।
3: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस विच इज नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर।
0: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज एक्चुअली एक तरह की एंजाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब एंजाइटी और फियर में एक फर्क है, एंजाइटी एक ऐसा इश्यू है जहां, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप जंगल से जा रहे हैं, वहां कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंजाइटी कहते हैं
1: जी।
0: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं। घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंजाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूं, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं।

0: और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स। तो ये एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है। आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है। आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक, मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये।
1: क्या बात है, तो सही बात।
0: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल। आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो एंजाइटी अटैक्स आते हैं, इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो। एंजाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन। तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी, एंड कीप योर सेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं यानी प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल। तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस। और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा। ये सिर्फ 60+ के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है। इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक।
1: नैन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं।
2: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ। सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है, तो वो उसे होता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज नॉट मोर देन 6 to 7 आवर्स। कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज्यादा नहीं बिठा सकते। आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें। अगर कोई बच्चा सुबह 1 बजे 2 बजे पढ़ता है, तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में जाते वो हो गए, 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए। आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए। इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल। तो मेरी हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट। When you study it out of pressure and when you study it out of entertainment, definitely आपके पढ़ने में फर्क होता है। See, as far as brain is concerned, some people are gifted. Let us not compare that way कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है, उसको याद रह जाता है। ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट? कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से जैसे, तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है। कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज करोगे, उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है।
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं, वेदांत, परिचय दे वेदांत, और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछे।
3: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ, जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो AI का

0: ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं। और बात आती है अपस्किलिंग, अपस्किलिंग तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं, एक और नई चीज मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद खुद ये चीज फेस कर रहा हूँ, तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
1: आप इस जनरेशन के हो, इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज एक मॉल की तरह है। हम जब
0: क्या बात
1: छोटे
0: है।
1: थे ना, तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे। आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कंफ्यूजन इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर है। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है, या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नायन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूं एज अ काउंसिलर, डेस्टिनेशन जो भी हो, जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
2: क्या बात है,
3: सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है।
1: वरना
3: कहते
1: क्या हो
3: हैं,
1: जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और उन्होंने
3: जी।
1: बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए। और आई थिंक इट वॉज इन डून स्कूल, तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू
3: जी
1: डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना जरूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो AI प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज, अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा। तो दोनों नीचे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब 2 बार मांग के खाता हूं इसका मतलब अच्छा ही है। नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूंगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन।
2: क्या बात,
1: छोटी छोटी बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो, आपके लिए कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
3: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है, हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो NCERT की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिविजन करे कि वो

0: अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके।
1: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है, पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे। ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई मेन्स हो, उसका बेसिक बुक ही एनसीईआरटी है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक। उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना काम डिवाइड कर लें। अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए। देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप एक मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में। अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए। एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7 to 3 या तो 7 to 4, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते। बिकॉज सीधी सी बातें, बच्चा जो देखेगा वो करेगा। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए। तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए। जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग। सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसिलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू आर देयर रोल मॉडल्स। तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि एमसीक्यूज के कौन से बुक्स अच्छे हैं। आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें। हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए। वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है। सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं, मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस। यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग मेरे साथ में पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना था। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देयर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है, आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा मेरा इंटरनल हीट उतना है। तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 years back, 25 years back, 20 years back, अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है। हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो। मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं। तो जैसे आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरल उसके बारे में सीखना भी होता है, इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है। आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो। एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी

0: चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है, वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है। मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है। आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीख करने के लिए या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंगर पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है। ये माइंड ऐसा है, लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन
1: जी,
3: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है।
1: जी जी,
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है नरसिम्हाजी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिम्हाजी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे, सुमति जी से, कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसात्मक
4: हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी, तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
3: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत

0: मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको, रोड रेज जिसे कहते हैं। इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, कि वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है, इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीशन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
2: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11, 12 के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली चूंकि सब जगह अब कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजे, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
0: मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहां टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है और इनको काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजकर मदद लेना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू, क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना इजी नहीं है और ये
1: बिल्कुल
0: फिर नारकोटिक सेल तक जाता है और कॉलेजेस चाहते नहीं है कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल की लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहां पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूँ, द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट। तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है
1: जी
0: और
1: जी
0: वहां वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही। दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं।
3: मेरा नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेई मेंस की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलिडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर या फिर कुछ देर इज सम प्लानिंग? कितना प्लानिंग करते हो आप? वहां वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो, अम्ब्रेला की जरूरत है, स्वेटर पहनना है, डबल लेयर पहनना है, कितना पूछते हैं। बट वेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वॉन्ट टू प्लान। तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है ना? कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है। और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूं
1: बिल्कुल
0: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह, वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल
0: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो, ये जो फोन है ना इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो, इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। सुबह उठ के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो, स्टीव जॉब्स करते थे, When you want

0: टू अचीव समथिंग, सब कुछ प्लान होना जरूरी है. बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है. तो आपके पास ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं. बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको.
1: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है. इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज मैं 7 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है. क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूं, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूं, तो आई हैव टू बी माय ओन एडवाइजर. तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीजें मोबाइल में स्टोर करते हैं, नोट्स करके मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है. और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो. मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसके बाजू में स्माइली करता हूं कि नैन वेल डन. वैसे आप अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे. तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, राइट. यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड. घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आप को स्माइली दो. हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है. हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही. एंड मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग. मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाय स्टूपिड पेटी थिंग्स इन लाइफ.
2: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है. तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
3: मेरी बेटी है, 6 साल की है. सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब. बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग. ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उससे झूठ बहुत बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में. वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत. तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर. क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना, वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके. मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल. तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ. जैसे उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है. कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप?
0: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, कोई पूछते भी नहीं है.
2: वो ज्यादा मुश्किल है.
0: सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहाँ बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है. तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी. बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए. भूत है ये डराना ये सही नहीं है.
3: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने देखा नहीं ये भूत को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है ना?
2: बिल्कुल सही बात है.
0: सो अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है. लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है, आई वुड से बी ऑनेस्ट. बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए. उतना ही दो जितना वो समझ सके. एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग. वेरी गुड.
2: बिल्कुल.
4: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती. अभी जो बात चल रही थी उससे जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग. तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है.
0: डेफिनेटली.
4: हाँ, तो उसके उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
0: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है, वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
4: अच्छा,
0: हाँ। मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि उनके घर पर कौन कौन है,
4: हाँ।
0: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं, कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन, तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है।
4: Okay.
0: और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है, और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। आई कांट क्रिएट अ वॉर बिटवीन हस्बैंड वाइफ आफ्टर काउंसलिंग सेशन,
2: ये बहुत सही बात कही
0: आपने, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकेंड सेशन आए
2: जी।
0: तो माई चैलेंज इज गेटिंग देम फॉर द सेकेंड सेशन। पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ कि वही सजेशन देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग।
2: जी, एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा।
5: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है, नाउ आई एम इन सिक्स स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल, एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स है जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं?
2: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे। कहिए नयन सर, बताइए, आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है।
1: भले आज मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे भी दो तीन नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। मुझे सिविक्स कभी पहले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स जाते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो, तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसका जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है। तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी। यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो। ओके,
2: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है। अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी, अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
6: भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूं तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊं, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
2: क्या बात है।
6: और आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर ओझा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
6: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं, हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है। नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है, हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी।

0: जी,
1: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी। और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोजा कह रही है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी। भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते कि बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं। तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
0: जी जी।
1: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
0: जी, क्या बात
1: तो
0: है,
1: अगर वो समझदार हैं तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, वक्त निकाल के आप आई। अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं, हम समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नयन जी आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत सम्पन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार, कीजिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग

0: बनाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सहदेव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओतप्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत। आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी है। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको

सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारे एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है।
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान। 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल तक पहुंच बनाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी। श्रावण की पहली सोमवारी पर बाबा धाम में 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना, प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। नीट पीजी परीक्षा की नई व्यवस्था लागू, घर के निकट मिलेगा परीक्षा केंद्र, 4 अगस्त से नीट यूजी काउंसलिंग। और झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में जीते 21 स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तथा आत्मविश्वासी होना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि नशे के विरूद्व 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक रविवार को जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास

0: विश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: इस कार्यक्रम में रांची और जमशेदपुर सहित देश भर की 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। 2 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जंगलों में सक्रिय 1 करोड़ रुपए के इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश तक पहुंच बनाने के प्रयास में जुट गई हैं। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2017 में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सली राहुल के माध्यम से आकाश मंडल को मुख्य धारा में लाने की संभावना तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा वर्ती क्षेत्रों में निगरानी और खुफिया गतिविधियां तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने नीट पीजी परीक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परीक्षा तैयारियों की समीक्षा के बाद नई व्यवस्था को मंजूरी दी। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र घर के निकट आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के अनुसार ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस और अन्य अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला चरण 4 अगस्त से शुरू होगा। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए हैं। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ सेवा भाव से व्यवहार करने और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
2: सब श्रद्धालु यहाँ पे 100 किलोमीटर चल के आए हैं, तो उनकी जो फिजिकल और मेंटल फटीग है उसको ध्यान में रखना है और किसी भी किस्म का जो फाउल लैंग्वेज है वो बिल्कुल यूज नहीं करनी है। जगह मुख्य में ये ध्यान देना है कि उनको किसी भी तरह से वो फिजिकली चोटिल ना हो जाए।
1: वहीं देवघर में तीसरे दिन 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक से मिलकर क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने चाईबासा रेलवे स्टेशन के विकास, हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस के समयबद्ध संचालन और बांसपानी चाईबासा मार्ग से तेजस राजधानी एक्सप्रेस चलाने का सुझाव दिया। रेल प्रशासन ने मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन देते हुए क्षेत्र में बेहतर रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री की वर्षा जल संरक्षण की अपील का असर जामताड़ा जिले में देखने को मिल रहा है। पर्याप्त वर्षा नहीं होने के बावजूद खेतों की मेड़बंदी कर संरक्षित वर्षा जल से किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। आत्मा के परियोजना उपनिदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 65% धान रोपाई पूरी हो चुकी है तथा किसानों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3: वर्तमान में जो 2-3 दिन से बारिश हो रही है बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जिससे मेरा लगातार जो है रुपाई का सब किसान लगे हुए हैं। हम लोग समय समय पर किसान को टिप्स भी दे रहे हैं, कृषि से संबंधित सभी जागरूकता कार्य भी कर रहे हैं, खेती बचाओ अभियान भी चला मेरे यहाँ, सभी तरह से हम लोग लगे हुए हैं। हमारे विभाग पूरा तत्परता से किसानों पर नजर रखे हुए।
1: गोड्डा जिले में आपातकालीन पुलिस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए डायल 112 की 20 नई गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने पुलिस लाइन परिसर से इन वाहनों को संबंधित थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों के शामिल होने से आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और गश्ती व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
4: पुलिस मुख्यालय द्वारा हम लोगों को ये सेकेंड लॉट 20 गाड़ियों का उपलब्ध कराया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि हम लोगों को पेट्रोलिंग अच्छे से करना है। डायल 112 का जो देख रहे हैं सभी गाड़ियों पर स्टिकर लगा है। पुलिस आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध है, आप हमेशा

0: 112 का उपयोग जरूर करें। निश्चित ही आपको 112 के फोन करने से आपको जो उचित सहायता पुलिस द्वारा दी जानी उपलब्ध कराई।
1: जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में एक भाजपा कार्यकर्ता से कथित मारपीट के मामले में संबंधित होमगार्ड जवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने पीड़ित से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषी जवानों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रूपये प्रति किलो है। आसनसोल में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 21 रजत और कांस्य पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। क्लब के सभी प्रतिभागियों ने ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। अश्विन ने सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीते, जबकि रवि, अश्विनी, स्नेहा, राखी, विवेक, अर्णव, सचिन और सौरभ ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में पदक हासिल किए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित विश्व मिक्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। अंश कुमार सिंह, तेजस्वी कुमार और रोनिका राशि ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। 29 से 31 जुलाई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान। 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल तक पहुंच बनाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी। श्रावण की पहली सोमवारी पर बाबा धाम में 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना, प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। नीट पीजी परीक्षा की नई व्यवस्था लागू, घर के निकट मिलेगा परीक्षा केंद्र, 4 अगस्त से नीट यूजी काउंसलिंग। और झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में जीते 21 स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़

लगती है। चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं। सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए। चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो, अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था। और मुझे लगता है कि एक समय होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पे, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं

0: वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत। मन्नाडे की आवाज, गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तब शब्द भूल जाता हूं, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूं, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था सर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध है, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
4: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
4: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
3: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
4: नशा के

0: केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और

0: बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माही, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की 6वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इश्रूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
2: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सुमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर

0: रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाल चौधरी का संगीत।
1: थे थे तत आ थे थे तत।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। जमशेदपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान माय भारत के स्वयं सेवकों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल युवा प्रतिभागियों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।
1: हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम सब यहाँ पे एक नए सीख के साथ आए कि नशा मुक्त भारत बनाना है और हम लोग के बीच प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो उन्होंने हमें सीख दिया कि हमें सबको मिलकर भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो हम सब यहाँ पे आज प्रतिशल है कि हम लोग भारत को नशा मुक्त बनाएंगे।
0: देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक रही। वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई महीने तक कुल कोयला उत्पादन 302.24 मिलियन टन और कुल कोयला आपूर्ति 354.70 मिलियन टन रही है। ये पिछले वित्त वर्ष में जुलाई तक की तुलना में 5.87% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक युवक रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि कई घंटों की मशक्कत और समझाए जाने के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरोध में टावर पर चढ़ा था। इन अनियमितताओं के कारण उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिल सकी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विकसित भारत

0: भारत के संकल्प के साथ नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी साइक्लोथोन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक साइक्लोथोन नहीं थी, बल्कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से पूरे देश को एक स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान भारत के निर्माण का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका मिशन स्वच्छ भारत, शारीरिक फिटनेस और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है।
1: युवा ही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि युवा देश और उस युवा शक्ति से बढ़ता है। तभी आज 79 कैडेट्स जब साइक्लोथोन में भाग ले रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और यही जो कैडेट हैं, विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका मोटो है स्वच्छ भारत, फिटनेस और नशा मुक्त भारत बनाना।
0: स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लैंतोजाम हिस्सा लेंगे। इधर मुक्काबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पैरा एथलेटिकों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ कुल फिलहाल 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर मंत्री ने लिखा है कि देश की बेटियों ने 5 बॉक्सिंग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। इन खिलाड़ियों के धैर्य और पक्के इरादे ने एक बार फिर देश को बहुत गर्वान्वित किया है और पूरे भारत में लाखों युवा एथलीटों को प्रेरित किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील, ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी

तो ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। दी पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार, शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से, यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूलवाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूलवाले।

लेने। और आज का ये जो हमारा सफर था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से। नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: खैर छोड़ें इस तस्करे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
1: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
0: तो फिर इंतजार किसका है? जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
1: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
0: क्या कह रहे हैं बख्त खान?
1: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
0: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के बीहड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
0: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है अलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
0: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: দাদা জান কি জান, আও বলো বেটে রুখসানা।
1: अब आप ही फैसला फरमाएं।
0: किस बात का फैसला बेटे?
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
0: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
1: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
0: अपने अपने घर।
1: मगर क्यों?
0: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
1: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
0: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
1: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
0: दादी जान।
1: खाना कौन खिलाएगा?
0: दादी जान।
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
0: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
1: आप? दादा जान।
0: हाँ।
1: आप?
0: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
0: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
1: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यहीं खत्म करें।
0: हाँ।
1: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें।

0: अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सिया आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका ए आलिया, कभी जमुना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज और खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्मे चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुष्ट थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले देखते रहते हैं।
2: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
1: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
2: कोई आ रहा है।
1: आप पर्दे में हो जाएं।
3: आलीजा,
1: क्या खबर लाए बख्त खान?
3: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
1: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
3: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
1: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
3: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों, पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे

0: और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
1: बहुत खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
0: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है अलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
1: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
0: बजा फरमा रहे अलीजा, इस मादरे वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाईं, शालीमार और निशात बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
1: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
0: आलिया, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जाओ कैसे हो सकता है?
2: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
2: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेस बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
2: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
2: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
2: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
2: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की माथहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ए पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
2: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
3: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।

0: खान, आली जहां ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है, इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
1: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
0: बख्त खान, जबान को लगाम दो।
1: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आली जा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
2: बख्त खान, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खान और ये जईफ बादशाह जफर।
1: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
0: बख्त खान, बादशाह तन्हा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
1: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
2: बख्त खान, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
1: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
0: बख्त खान, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
1: आप खामोश हैं आलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
2: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
0: नहीं नहीं आली जा, हम सही रास्ते पर हैं।
2: ये कैसा शोर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
0: वो आ गए।
2: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
0: फिरंगी, मैं देखता हूं।
2: मलिका आलिया,
3: मेरे सरताज,
2: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्त खान को बुलवाएं।
4: बख्त कैन, बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
2: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहां है? उसने हमसे कहा था।
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
2: मक्कार इलाही बख्श,
4: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
2: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
4: What did he say?
2: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत, मर्डर का इज्जत, तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
2: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह, तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से ड्यू ले जाकर मारेगा।
2: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत।

0: एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदम बोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
1: आई नो हम एटिकेट भूला नहीं, बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट आई मीन तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
2: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में।
0: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई, हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं।

0: तोहफा। अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट

0: था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस।
3: थोड़ी ही देर में

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। जमशेदपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान माय भारत के स्वयं सेवकों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 से राज्य में JPSC, JSSC और CGL सहित कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक रही। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विकसित भारत के संकल्प के साथ नई दिल्ली में आयोजित NCC साइक्लोथॉन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रा सिर्फ एक साइक्लोथॉन नहीं थी, बल्कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से बुरे देश को एक स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान भारत के निर्माण का संदेश दिया गया। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दिखा थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था। बम्बई में हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था। कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे। इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और NCPA के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
2: जी।
1: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो,

0: पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया और उस दरमियान मेरी अस्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद। अस्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी। मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर 4-5 दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना। हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें। और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं। और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुख, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई हैड माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, 2-3 बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई। और फिर धीरे धीरे इधर से उधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पुणे में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, and that was it, that was the last conversation we had. फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ, अरे वाह,
1: है ना।

0: कहते लोग, और उसमें बीआर चोपड़ा थे जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा, सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया, क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे, वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी और वो थे गुल आनंद।
1: क्या बात है,
0: गुल आनंद भी वहां थे और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वाज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह कहके उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क, हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी टेलीफिल्म कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च डाला
1: जी। अच्छा, शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए, भारत आके मैंने इधर उधर बताया। फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी आवाज? मैंने कहा नहीं अभी, क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। तो, लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे 1 हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदलना था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान, कंट्रीब्यूशन,
0: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे की कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था।
1: अच्छे प्रोड्यूसर की
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग। और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहाँ भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल। ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा। उन्होंने एक्टर्स भी चुने। अब दीप्ति नई नई आ रही थी बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया। और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वाज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था। मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी। एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वो हंस के कहता है हाँ ओके बाबा ले लिया उसको। क्योंकि बाकियों को तो रवि को बेचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी, मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की। और फिर देखा था उधर उधर, और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था। तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और बहुत, वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे कथा में नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे। हाँ पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया
1: एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे पुरानी दिल्ली वाले, जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन।
0: सईद जी जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा।
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी,
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
0: बिल्कुल, और वो जिस तरह से हाँ, वो किचन
1: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उसपे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया, दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी। बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
0: क्या प्यारी।

0: बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं।
1: हाँ।
0: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
1: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
0: जी।
1: हाँ।
0: वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है। हाँ। तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
1: कभी जीरत अमान का आता है
0: जी,
1: है?
0: जी,
1: कभी देवानंद का, और वो
0: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
1: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
0: जी।
1: और कभी दिल चाहे या माथा यारा में,
0: मैंने तो हाँ कह दी,
1: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे,
0: शीशा हो या दिल, उसमें तो जो दीप्ति लगी है
1: वो बहुत अच्छा किया रहा है उसने, बहुत सुंदर किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
0: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
1: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
0: तीसरी मंजिल,
1: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह, कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
0: डांस करवा ले,
1: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
0: जी।
1: हाँ, तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है, और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब को सही, हाँ जी जी बिल्कुल ये सही शोर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती थी।
0: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं, तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
0: जी।
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बम्बई राजकमल में। हाँ
0: जी जी।
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था, हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है
0: जी,
1: विच इज अनहर्ड ऑफ, ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है जो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे, तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या

0: अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है। मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर ठक से, एकदम पूरा रील का रील बाहर। तो शर्म नहीं आती कैसे काम लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा किया, हमें भी बहुत अच्छे मिले। फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब का
1: जी,
0: वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ। मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक चलो, तो फिर दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा, फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्म आई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहते सही हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश है ना, इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है, क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह, उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर। मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये ले लो। अच्छा चलो फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये।

0: ये भी कह के आगे गई
1: जी, जी.
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया और ये सब
1: डाला
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से वहाँ इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यू ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा कर फर्स्ट टेक ओके हो गया और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई दरवाजे में मंगेश जी उन्होंने दोनों हाथ जोड़े कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, वाह वाह क्या बहुत खूब
1: तो, क्या बात है. लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया.
0: बिल्कुल. अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है नहीं?
1: बिल्कुल. इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है.
0: हाँ बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी. हाँ गीत मतलब देखो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है. जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है. और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी काली सी
1: हाँ.
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए. तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके
1: क्या शानदार
0: और वो इतना और चकित भई सगरी नगरी तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कह रहे ये कहाँ गई है मगर मतलब पूरा वो बैठ गया इतना. मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट फिर राजकमल का म्यूजिक और फिर गाने वाले और फिर मेरे एक्टर और मैं
1: कमाल ये गाना सुनते
0: जी क्या बात.

0: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
1: हाँ।
0: ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरो दिया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
1: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
0: जी, आंसू बह रहे हैं उसके, और पूरा माहौल आप बनाते हैं उसमें।
1: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया।
0: आई
1: लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
0: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है। हाँ, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
1: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे और तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
0: बिल्कुल,
1: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं, तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावत प्रणय मोहब्बत, वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
0: बिल्कुल, तो ये गाना इस इंटरव्यू में प्यार
1: लगावत भी सुनोगे।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं, और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली,
0: जी नामावली, जिसमें वो एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली,
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। तो वैसे उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल, दसवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
1: क्या। और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना। ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा की क्या बताओ।
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: बिल्कुल।
0: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: हाँ, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बद्दूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
0: कोई टकराव होता था?
1: बहुत बार, बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब बड़े अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल। और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची के नगरी पुलिस थाने में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई। राज्य के श्रावणी मेला के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने देवघर स्थित घोरमारा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर विभिन्न पेड़ा दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान

0: पहले जब्त किए गए 1060 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा को नियमानुसार नष्ट कराया गया। विभाग ने कहा कि मेले की अवधि में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक युवक रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि कई घंटों की मशक्कत और समझाए जाने के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरोध में टावर पर चढ़ा था। राजधानी रांची समेत लोहरदगा, गुमला और खूंटी के अलावा राज्य के कई जिलों में परसों से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बताया कि इस महीने वैसे तो सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है, लेकिन बीच बीच में मौसम प्रणाली के सक्रिय होने पर अच्छी बारिश हो सकती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आज कहा कि देश के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल ने केंद्र सरकार की ओर से खेलो इंडिया समेत अन्य प्रयासों को भी सराहा और कहा कि खेल समेत अन्य क्षेत्रों में भी देश अच्छी प्रगति करेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिन भर की थकान के बाद आप बैठे हैं अभी रेडियो सेट पर, सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम। आज हम करेंगे ढेर सारी बातें, कौशल विकास की बातें भी होगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गाना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, आज के दौर में केवल डिग्री की सफलता ही गारंटी नहीं है, बल्कि सही कौशल यानी स्किल ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाता है। इसी सोच के साथ आज हम जानेंगे कौशल विकास कैसे युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के

0: द्वार खोल रहा है। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है, लेकिन यदि युवाओं के पास आवश्यक कौशल नहीं होगा तो रोजगार प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। कौशल विकास का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण जिससे व्यक्ति किसी विशेष कार्य को कुशलता और आत्मविश्वास के साथ कर सके, जैसे कंप्यूटर संचालन, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी एंड वेलनेस, कृषि आधारित तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रोन संचालन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा युवाओं को निशुल्क या कम लागत पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। आज कंपनियां भी ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देती हैं जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान और कार्य करने का कौशल हो। इसलिए केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि कौशल भी समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। यदि आपके पास कोई हुनर है तो उसे और बेहतर बनाइए। यदि कोई कौशल नहीं तो प्रशिक्षण अवश्य लीजिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा देने की। आज कई युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही रोजगार शुरू कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन सेवाएं दे रहा है, कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है, तो कोई स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है बल्कि वे दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, बेरोजगार युवा हैं या अपने कैरियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो अपने आसपास उपलब्ध कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी लें, अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। कौशल ही सफलता की असली पहचान है और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव भी। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक भेंटवार्ता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। भेंटवार्ताकार है सुनील कुमार और भेंट करता है प्रकाश कुमार राणा।
1: श्रोताओं, आज हम आए हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रांगण में और हमारी बातचीत हो रही है सुनील कुमार, जो कि एक इस केंद्र के केंद्र संचालक हैं। तो जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हमारे ग्रामीण भाइयों को, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का जरिया कैसे बन सकता है। तो केंद्र संचालक सुनील कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो योजना है, इस योजना के बारे में आप बताएं।
2: ये एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवक जो बेरोजगार हैं उनको कौशल विकास के लिए ये एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जितने भी बेरोजगार जो पढ़ लिख के बेरोजगार क्षेत्र में बैठे हुए हैं ग्रामीण इलाका में, उनको रोजगार हम लोग देते हैं।
1: तो जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो क्षेत्र है, एक शहरी क्षेत्र आता है, एक ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये खासकर ग्रामीणों क्षेत्र के युवकों के लिए, युवतियों के लिए है या फिर शहरियों के लिए भी ये योजना है।
2: नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही है, ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां कर सकते हैं इसमें।
1: जी, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी क्या विशेषता है।
2: जैसा कि आपने बोला, ये मुख्य देश जो है, मुख्य देश ये है जो जितने भी बेरोजगार युवक बैठे हुए हैं उनको रोजगार देना, इसके लिए ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो चलाई गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं
1: जी।
2: उसके बाद उनको हम 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उन लोग को हम जॉब देते हैं लेके।
1: तो ये जो ट्रेनिंग और ये बात कर रहे थे आप, तो ये कैसा है, निःशुल्क है, इसकी क्या विशेषता है, वो खुल के बताइए।
2: ये बिल्कुल निःशुल्क है जी। इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है, ये सरकार के द्वारा एकदम निःशुल्क चलाया गया योजना है
1: जी।
2: इसमें हम लोग 3 महीने का कोर्स करवाते हैं, जिसमें कि उनको हम बुक, बैग, ड्रेस, कॉपी, पेन, मेडिकल, रहने खाने की सुविधा जो भी है, सब चीज एकदम निःशुल्क रहता है उनको। यहाँ पे सारी सुविधा उनको निःशुल्क दी जाती है, उनसे 1 रुपया का भी चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके बाद हम लोग उनको 3 महीना ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको हम लोग प्लेसमेंट से जोड़ते हैं
1: जी।
2: जितने हम लोग के स्टूडेंट हैं सबको हम लोग प्लेसमेंट देते हैं लेके नौकरी, और नौकरी जो देते हैं वो नौकरी का पेमेंट मिनिमम 6,000 रुपया रहता है, मैक्सिमम उनके इंटरव्यू पे निर्भर करता है, उनका कौशल पे निर्भर करता है कैसा है। जिस समय उन लोग का प्लेसमेंट हम देते हैं, प्लेसमेंट के तहत भी अपने ओर से सरकार उनको 1,000 रुपया पर मंथ 3 मंथ तक उनको सपोर्ट करती है।
1: ये छात्रवृत्ति के तौर पर उन्हें दिया जाता है?
2: जी जी जी, उनको छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाता है।
1: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई ग्रामीण युवक आपसे जुड़ना चाहे तो उन्हें क्या क्या आहर्ता होनी चाहिए या क्या क्या कागज संबंधी जो योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जरा बताएं आप।
2: देखिए, जैसा कि आपने बोला पेपर के बारे में, तो इसमें मुख्य है जो आधार प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका 12th पास होना 10th पास होना अनिवार्य है, एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए, उसके बाद बहुत अच्छे फोटोग्राफ लगते हैं, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप बीपीएल परिवार के होना अनिवार्य है, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए ही निकाला गया है।
1: यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले जितने भी ग्रामीण युवक युवतियां हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
2: जी जी जी, उसी वही उन्हीं लोग के लिए है, वही लोग लाभ उठा सकते हैं।
1: तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ अब प्रशिक्षण शुरू होने वाली है?
2: JSLPS एक झारखंड सरकार की संस्था है, वो अलग अलग हम लोग को प्रखंड ये अलॉट करती है। हम लोग का मोबिलाइजर जो है वो जाते हैं प्रखंड में, घर घर जाके सभी आदमी को बताते हैं ऐसा ऐसा योजना आया हुआ है जिसमें कि आपको निःशुल्क खाना पीना रहना प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद नौकरी दिया जाएगा, आप अपने बच्चे को भेजिए वहाँ पढ़ाइए, उनके बाद उनका कौशल विकास होगा तो हम लोग जॉब देंगे। घर घर जाके हम लोग उनको बताते हैं, उसके बाद उन लोग का फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म भरवाने के बाद उन लोग का टेस्ट छोटा सा होता है, टेस्ट देने के बाद जो आदमी पास करते हैं उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं।
1: निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि वे प्रशिक्षण का जो ब्यौरा होता है कि खासकर किस किस चीज पे आप प्रशिक्षण दिलाते हैं तो उस पे भी चर्चा हो जाए।
2: यहाँ तो अभी 2-3 सेक्टर में प्रशिक्षण होगा, रिटेल हो गया, IT कंप्यूटर आ गया, उसके बाद आप हॉस्पिटलिटी का देंगे, सिक्योरिटी गार्ड का देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी एक ही इसमें DTP का ट्रेनिंग कंप्यूटर में दे रहे हैं, DTP में, उसके बाद हम लोग इसके बाद टेली का देंगे जी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी मार्च में सिक्योरिटी गार्ड का भी ट्रेनिंग देने का सोच रहे हैं, उसमें सेंटर हम लोग लाइन अप कर रहे हैं, उसके बाद उसका भी ट्रेनिंग हम लोग देंगे।
1: इस योजना का क्रियान्वयन किनके द्वारा होता है?
2: ये केंद्र सरकार के द्वारा है।
1: केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। तो ये तो बहुत सारी बातें आपसे सुनी, अब आपसे हम बात करेंगे कि प्रशिक्षण के दौरान आप क्या क्या सुविधाएं जो पूर्ण रूप से दे देते हैं उसके बारे में बताइए।
2: प्रशिक्षण के दौरान हम लोग उनको ट्रेनिंग 8 घंटा डेली देते हैं, 8 आवर, उसके बाद उनको 3 टाइम लंच करवाते हैं, खाना 3 टाइम देते हैं, उसके बाद उनको हॉस्टल की सुविधा हम दिए हुए हैं, हर एक स्टूडेंट को अलग अलग बेड की सुविधा मिला हुआ है, बिजली पानी जो भी है सब एकदम पर्याप्त रूप से एकदम उपलब्ध रहता है,
1: निःशुल्क
2: एकदम निःशुल्क है, एकदम हॉस्टल की सुविधा उनके लिए निःशुल्क है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, दोनों के लिए वार्डन का सुविधा किया हुआ है, मतलब पूरा एकदम फुल्ली निःशुल्क है, और सब चीज़ की सुविधा जो कि दैनिक जीवन में होना चाहिए आपको उपयोगी के लिए, सब चीज़ का हम लोग सुविधा देते हैं।
1: बिल्कुल, और यदि हम बात करें कि आपके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी गुणवत्ता की बात करें कि क्या वे सही रूप से वे उस सक्षम हो पाते हैं कि आगे जाके वे कोई स्वरोजगार को अपना सके या कोई संस्था से जुड़ के वो अपनी आय का जरिया बना सके?
2: जी, मैं अभी बोला था जो मैं सबको यहाँ पे जैसे 8 आवर पढ़वाता हूँ और टेस्ट लेके सबको लाता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी जो लड़के के रहते हैं वो सबको ही लाता हूँ मैं, और यहाँ लाके उनको प्रशिक्षण 3 महीना जो देता हूँ 8 आवर का, उसमें मेरा काम ही है उनका कौशल विकास करना, तो मैं उनको इस तरीके से बता देता हूँ ताकि वो आगे चल के अपना या तो स्वरोजगार करें या मान लीजिए प्लेसमेंट हम दिलवाते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से 110% कोशिश करता हूँ सभी आदमी को प्लेसमेंट दे ही देने का। जो आदमी 2-4 आदमी प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, उन्हीं सब आदमी को मैं आगे चल के वो व्यवसाय करते हैं अपना।
1: हाँ जी, आपसे हम आगे ये जानना चाहेंगे कि यदि वे 3 महीना का ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपके पास क्या मापदंड होता है कि वे सीख चुके हैं, इस प्रशिक्षित हो चुके हैं?
2: 3 महीना के बाद हम लोग एक
1: प्रमाण पत्र वगैरह देते हैं।
2: जी, हम लोग एक एग्जाम करवाते हैं 3 महीना के बाद, एग्जाम में NCVT का सर्टिफिकेशन हम लोग करवाते हैं, उसके बाद एक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद हम लोग 3 महीना ट्रेनिंग के दौरान 1 महीना का हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं, एक उसका सर्टिफिकेट हम लोग उनको देते हैं लेके, तो सर्टिफिकेट में जो ग्रेड आता है उसके हिसाब से उनका ये पता चल जाता है कि किस ग्रेड के श्रेणी में आ रहे हैं,
1: श्रेणी में आते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय का जो बाजार में जितने भी हमारे इस राज्य में ग्रामीण गरीबों को आगे लाने के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे कि औपचारिक शिक्षा हो गया, बाजार में अनुकूल कौशल की कमी हो गई, प्रशिक्षण की भी कमी होती है, आजीविका की भी कमी होती है, और रोजगार स्थायी बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस खाई को हटाने में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस प्रकार सहायता करता है?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग अभी बात किए थे तो प्लेसमेंट का, इसमें जो बेरोजगारी है सबसे अभी मार्केट का सबसे बड़ा पहलू है या गाँवगढ़ में जो प्लेसमेंट से बहुत कम आदमी जुड़े हुए हैं, नौकरी बहुत कम आदमी कर रहे हैं जिसके कारण कि उनका विकास नहीं हो रहा है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना का सबसे बड़ा यही प्रोजेक्ट है, इसी यही काम है जो जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार देना, और हम एकदम कोशिश कर रहे हैं सभी आदमी को, जितना को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी आदमी को नौकरी दें हम लोग, और नौकरी हम लोग अभी तक यहाँ पे 140 स्टूडेंट का ट्रेनिंग दिलवाए हैं अभी तक में, जिसमें से कि हम लोग अभी तक 70 स्टूडेंट का जॉब दिलवा चुके हैं, और हम लोग प्रयासरत हैं सबको धीरे धीरे दिलवा।
1: आने वाला समय में ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है इसका विस्तार कैसे हो, ग्रामीणों तक आपकी पहुँच बनी रहे, और जो जो युवक है जो पढ़ने लिखने के बाद भटकाव की स्थिति आती है वे आपसे जुड़े और प्रशिक्षण ले, अपना स्वरोजगार को अपनाए, इसके लिए आपकी क्या पहल है?
2: देखिए, इसके लिए तो हम लोग वही है जो गांव-गांव घर जाके हम लोग पंचायत पंचायत जाके सब आदमी को बता रहे हैं ये प्रशिक्षण आया हुआ है, इसके अंतर आप अपने बच्चे को भेजिए, प्रशिक्षण दिलवाइए और जॉब में जॉब से जोड़िए ताकि आपका विकास हो सके, और जॉब जब तक कि घर में इनकम नहीं होगा तो उनका विकास संभव नहीं है।
1: एक साल में कितने बार कई बैच निकालते हैं आप प्रशिक्षण के ऊपर?
2: एक साल में हम लोग 4 बैच निकालते हैं
1: जी,
2: 3-3 महीना का कोर्स है
1: जी,
2: तो 4 कोर्स हम लोग 4 बैच हम लोग निकालते हैं।
1: तो मिनिमम जैसे कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं आप?
2: नहीं, वो बैच समाप्त होने की तिथि होती है 3 महीना जब पूरा, उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद हम लोग फिर नया बैच स्टार्ट कर देते हैं।
1: तो केंद्र संचालक सुनील जी, आप तो बहुत बढ़िया बताएं कि ये योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां लाभ उठा सकते हैं। हम आपसे आखिर में एक बात करना चाहेंगे कि यदि हम एक ग्रामीण क्षेत्र के युवक हैं, हम आपके पास इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरी क्या पहल होनी चाहिए?
2: ये युवक के लिए एकदम वेलकम है ये सब योजना में, क्योंकि युवक के लिए है ही। आपकी पहल यही होगी जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं जो मापदंड हम लोग का होगा उनको आपको फुलफिल करना होगा पेपर में, क्योंकि यहाँ पे पैसा का कोई बात नहीं उठता है, केवल पेपर हम लोग लेते हैं, और जो भी पेपर मैंने अभी बताया था आधार कार्ड ये, उसके बाद बीपीएल कार्ड, उसके बाद आप 12th का पेपर दीजिएगा, फोटो दीजिएगा, बस यही आपका मापदंड रहेगा। उसके बाद आप इच्छुक अगर हैं तो आप यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको मैं प्लेसमेंट दूंगा। लेकिन
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप अपना कोई मोबाइल नंबर है वैसे बता दें ताकि हमारे श्रोतागण सुन लें, और यदि वो आपसे संपर्क करना चाहे तो वो संपर्क कर सकते हैं।
2: हाँ, हम लोग का मोबाइल नंबर है 9470270493।
1: तो ये थे केंद्र संचालक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सुनील कुमार जी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बेहतर योजना के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी ग्रामीण श्रोता भाई बहन हैं वे इनसे जुड़ेंगे और इन योजना का लाभ उठाएंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डालें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। और आइए अब सुनते हैं एक गाना।

इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल से माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम युवा तरंग।

सभी दोस्तों को माधविका नमस्कार जोहार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह दिन जो है वो सच्ची दोस्ती, विश्वास, प्रेम, सहयोग और आपसी सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों मित्र हमारे जीवन के सुख दुख के साथी होते हैं और कठिन समय में हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आइए आज फ्रेंडशिप डे पर हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पहले मिलकर सुनते हैं एक गाना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट

0: वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, कहते हैं सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में भी आपका साथ न छोड़े। दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने या बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सम्मान और सहयोग की मजबूत नींव पट्टी का एक खूबसूरत रिश्ता है। दोस्ती की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है विश्वास। जब दो दोस्तों के बीच भरोसा होता है तो वे बिना किसी डर या झिझक के अपनी मन की बात एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। विश्वास का अर्थ है एक दूसरे की बातों को समझना, उनके रहस्यों की रक्षा करना और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाना। यदि दोस्ती में विश्वास नहीं होगा तो छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा सच बोलें, अपने वादे निभाएं और अपने मित्र का भरोसा कभी न तोड़ें। हर व्यक्ति की अपनी सोच, पसंद और व्यक्तित्व होता है। एक अच्छा दोस्त वही है जो अपने मित्र के विचारों, भावनाओं और निर्णयों का सम्मान करता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद कभी मनभेद नहीं बनने चाहिए। सम्मान हमें सिखाता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं की कद्र करें और उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वे हैं। याद रखिए, जहां सम्मान होता है वहां रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। दोस्ती का तीसरा आधार है सहयोग। सच्चा मित्र वही है जो केवल खुशियों में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहे। पढ़ाई हो, खेल हो, प्रतियोगिता हो या जीवन की कोई भी चुनौती, एक दूसरे का सहयोग ही दोस्ती को और मजबूत बनाता है। सहयोग का अर्थ केवल आर्थिक मदद नहीं, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, सही सलाह देना, हिम्मत बढ़ाना और समय पर साथ देना भी सहयोग का ही एक रूप है। विश्वास, सम्मान और सहयोग, ये तीनों गुण किसी भी दोस्ती को जीवन भर मजबूत बनाए रखते हैं। आज फ्रेंडशिप डे के दिन आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने मित्रों का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति में उनका सहयोग करेंगे। इसी सुंदर संदेश के साथ आइए सुनते हैं लॉ की डिग्री के बाद करियर की संभावनाएं।
2: दोस्तों, लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए करियर को लेकर क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में आइए जानते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयदीप सन्याल जी से। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: आपको भी नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो हजारीबाग शाखा को।
2: सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं लॉ की पढ़ाई करने वाले, वो किस कक्षा से लॉ की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं?
3: लॉ का पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ग्रेजुएशन का बाद, 3 कोर्स जो ग्रेजुएशन में रहते हैं, उसके बाद में मेडिकल पास करने के बाद में, उसके बाद में इंजीनियरिंग पास करने के बाद में, और उसके साथ साथ हम लोग का 5 इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 12 पास करने के बाद, मतलब प्लस 2 जो पास करेंगे, आइदर बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी पास करें।
2: अच्छा, हर एक स्ट्रीम के बच्चे लॉ कर सकते हैं?
3: लॉ कर सकते हैं।
2: लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग जो होते हैं उनकी सोच होती है कि लॉ की पढ़ाई के बाद सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट बना जा सकता है, तो करियर को लेकर के और भी किस तरह की संभावनाएं होती हैं लॉ की पढ़ाई करने के बाद? सर, इस विषय में थोड़ा जानकारी दें।
3: देखिए, हम आपका साथ एक सहमत नहीं है ये विषय में, क्यों लॉ का पास करने के साथ साथ सिर्फ जो माथा में हम लोग का है जो सिर्फ एडवोकेट ही बनेंगे, ये बात सही नहीं। एडवोकेट का साथ साथ लॉ का एक डिग्री है। लॉ का साथ में हम जैसे पास करेंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे जो हम कोई यूनिवर्सिटी में टीचर बनेंगे, लॉ का टीचर बनेंगे, इसके लिए हम मास्टर डिग्री करेंगे लॉ में। मास्टर डिग्री के बाद में भी हम लॉ में पीएचडी करेंगे। पीएचडी करने के बाद में भी हम यहाँ पर लॉ फैकल्टी हिसाब में हम ज्वाइन कर सकते हैं कोई यूनिवर्सिटी में जहाँ पर लॉ का पढ़ाई होता है। एक नंबर गया। दो नंबर गया, लॉ में सिर्फ एडवोकेट ही हम नहीं हो सकता है, हम जुडिशियल ऑफिसर भी बन सकते हैं। लॉ का साथ में हम सिर्फ लॉ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग नहीं है, हम यहाँ पर एनजीओ का एडवाइजरी बोर्ड में भी हम रख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लीगल ऑफिसर भी बन सकते हैं। सोचिए, सेबी बोल के एक संस्था है जो शेयर नियंत्रण करते हैं सारा भारत में, उसमें भी हम लॉ ऑफिसर हिसाब में हम योगदान कर सकते हैं। इसके बाद में पंचायत लेवल पर लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ये सब चीज जो लेते हैं उसमें भी हम योगदान कर सकते हैं। मेरा टैलेंट रहेगा तो हम और ऊंचा में जा सकते हैं। सिर्फ एडवोकेट करके, एडवोकेट मतलब है कि हम LLB पास करके हम एडवोकेसी कर सकते हैं, एनरोलमेंट करके उसमें ऑल इंडिया बार एक

0: एग्जाम देना पड़ता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के बाद हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन LLB करने के बाद में भी हम बहुत कुछ में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आज का दिन में जैसे CA, जैसे CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब चीज में हम लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए, लॉ पहले पास कर चुका है तो उसमें मेरा बहुत छुटकारा मिलता है वहाँ पर। क्यों? ए कोर्स का साथ मेरा ए कोर्स अभी लिंक है, लॉ का पेपर सारा चीज छुटकारा मिलता है। इसमें बहुत जो लोग थोड़ा से इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा में थोड़ा से होशियार है, थोड़ा से नजर देता है, वो लोग CA CS कॉस्टिंग लॉ का पास करने का बात कर लेता है। क्यों? पहले करने में ये लोग का ज्यादा पेपर देना पड़ता है, लेकिन लॉ पास करने में ये लोग का बहुत पेपर छुटकारा मिल जाता है, तो और बड़ा डिग्री हो जाता है। और आज के दिन में मोटा मोटी 10 दिन पहले का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विषय में बात किए थे, ये CS CA और कॉस्टिंग ये सब जो पास करेंगे वो भी टीचर हो सकता है, मास्टर डिग्री लेवल पर ये लोग का डिग्री इक्विवेलेंट कर दिया, तो ये लोग का बहुत बड़ा चीज हो गया। तो बाकी जो चीज है जो हम सोचे NGO सेक्टर में हम कर सकते हैं, NGO सेक्टर में काम कर सकते हैं, तो NGO में बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक लीगल ऑफिसर होने के कारण में बहुत कुछ जानकारी होता है और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट होता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद में सोचिए पुराना जमाना में आप देखिए जितना राजनीति की थी वो लोग ज्यादा लॉ लाइन से ही गया, क्यों? कोई एडवोकेट है, कोई बैरिस्टर है, कोई क्यों? पहले वाला राजनीति जितना था नेता लोग सारा चीज लॉ का बैकग्राउंड था। और क्यों? लॉ नहीं जानेंगे तो आपका जो मिनिमम जो ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अधिकार है, ये आप लोग का बहुत कुछ जानकारी नहीं होगा। तो मेरा राय है ये सब आज का दिन में लड़का लड़की लेडीज जेंट्स जो भी हो कुछ ना कुछ मिनिमम चीज जानकारी रखना चाहिए। तो लॉ एक बहुत बड़ा चीज है, बृहद चीज है, एक दिन में नहीं सीख सकता है, उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा।
1: तो लॉ की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं या उसके अलावा जो आम लोग होते हैं उन्हें भी कानून की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके, है ना? हम ये जानना चाहेंगे सर कि किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके कौन सी परीक्षाएं पास करके, जैसा कि आपने अभी बहुत सारी इसमें करियर की बातें आपने कही है, तो वो किस किस तरह की परीक्षाओं से गुजर करके उस पोस्ट को हासिल किया जा सकता है?
0: देखिए फर्स्टली हम बात करते हैं जैसे एक लॉ ईयर बनने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम देना पड़ता है आज का दिन, तो क्यों? ऑल इंडिया बार एग्जाम देंगे पास करेंगे तो अभी वो प्रैक्टिस में जा सकते हैं, एक नंबर गया। दो नंबर है उसके बाद में 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद जुडिशियल ऑफिसर का कारण में वो एग्जाम देंगे जुडिशियल, आइदर आप जैसे झारखंड है तो झारखंड में JPSC है, बिहार में BPSC है, वेस्ट बंगाल में PSC है, ऐसी टाइप UPSC है, सारा चीज ये सब चीज जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा दे करके पास करने के बाद वो आपने होंगे जुडिशियल ऑफिसर रैंक में जाएंगे। वैसी टाइप का जैसे APP होता है सरकारी वकील यहाँ पर सिलेक्शन वैसी पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन होता है। उसके बाद में लीगल ऑफिसर, कोई बैंक में लीगल ऑफिसर लेना पड़ता है, बैंक का वो लीगल ऑफिसर PO होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है, जो आप लीगल ऑफिसर लिए लीगल इतना हमको चाहिए, 2 पोस्ट 4 पोस्ट 5 पोस्ट जो भी हो, तो उसके लिए बैंक लेंगे एग्जामिनेशन, बैंक कंडक्ट करेंगे, बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड वो लेंगे। उसके बाद में रेलवे में लीगल ऑफिसर है, रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो लेंगे लीगल ऑफिसर के लिए, वो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसमें जो अप्लाई करेंगे एवं वो जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसके बाद में जो सिलेक्शन होगा।
1: LLB करने के बाद
0: उसके चाहिए आपका मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस, कोई कोई जाएगा 5 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे सोचिए जे LLB देने के बाद में भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जा सकते हैं, हम IPS सर्विस में भी जा सकते हैं। क्यों? बहुत LLB जो पास करने के बाद IAS बना और फिर भी लॉ का साथ पुलिस डिपार्टमेंट का जोग है, इसलिए IPS बनना बहुत सुविधा है और कानून भी जानते हैं और ऑल टाइम पुलिस का हाथ में कानून रहता है, तो कानून का किताब पढ़ के डिग्री लेकर के सारा चीज ये लोग का सुविधा होता है। तो इसके साथ साथ आपको पहले बोला है सेबी में भी ज्वाइन कर सकता है लॉ ऑफिसर, बहुत अच्छा दिन है। और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आपका लीगल ऑफिसर का बहुत युक्ति है, उसमें पोस्ट मिलता है, अभी उसमें भी जा सकता है। उसके बाद में आपका NGO सेक्टर में जा सकता है, बराबर NGO सेक्टर में। उसके बाद में देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई लॉ कमीशन रहता है, तो लॉ कमीशन में क्या होता है मेंबर भी बन सकता है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर फोरम में जुवेनाइल बोर्ड में ये सब में भी बन सकता है। तो वैरायटीज जगह है इसमें जो जिसमें सक्सेस हो सकता है।
1: LLB पास करने के बाद जो एडवोकेसी के क्षेत्र में जाते हैं तो फिर उनके एक लंबे पीरियड एक्सपीरियंस के बाद फिर उन्हें वे जज बनने के काबिल भी बन जाते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
0: जज हम लोग जो यूज करते हैं इन जनरल वे में, साधारण पब्लिक जो आम पब्लिक जो बोलता है जज साहब एक ही जगह में रहता है। एक है हाई

0: कोर्ट में और एक है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग का जो लोअर कोर्ट है, जैसे हम लोग का जैसे सिविल कोर्ट है, सदर कोर्ट है, एसडीओ कोर्ट है, ये सब चीज में जो जगह है, ये जगह में आपका जज नहीं बोलता है, जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बोलता है। और है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का नाम थोड़ा से उठ गया, उसमें डायरेक्ट उसको डिस्ट्रिक्ट जज बन रहा है। तो हाईकोर्ट जज बनने के लिए का सवाल था जज, तो हाईकोर्ट जज बनने के लिए दो तरीका होता है। एक है आपका एडवोकेट जो प्रैक्टिस करता है हाई कोर्ट में, उसी से सिलेक्शन होता है, उसका केस देखते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, उसके इनकम टैक्स देखते हैं, उसके बाद फाइल जाता है राज्य सरकार होकर के, लॉ कमीशन होकर के, आईन मंत्रक सेंट्रल गवर्नमेंट से होकर के चीफ जस्टिस होकर के आपका फिर लॉ मंत्रक से होकर के राष्ट्रपति तक, वो लोग का अपॉइंटमेंट में जो सिग्नेचर होता है वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो बात यह है ये जज ऐसी टाइप का होता है जो वहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाएंगे, केस दिखाएंगे, ये सब चीज दिखाएंगे, उसमें जज बनता है। उसके बाद में उसी से डायरेक्ट होता है कुछ दिन एक्सपीरियंस करके दूसरा जगह में चीफ जस्टिस बन करके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जो है उसी से भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी दो उदाहरण है, इसमें हम लोग का जो अभी एक ही लेडी जज है सुप्रीम कोर्ट में, मिसेस मल्होत्रा, वो भी डायरेक्ट वहाँ से ही हुआ, एडवोकेट एसोसिएशन से हुआ था, प्रैक्टिस करते थे, वहाँ से डायरेक्ट वो जज बना सुप्रीम कोर्ट में।
1: लॉ की पढ़ाई करने वाले जो छात्र होते हैं वे किस तरह से अपनी योग्यता और अपने अंदर का जो स्किल्स होता है वो किस तरह से वो डेवलप करें ताकि उनका जो करियर है वो ज्यादा ब्राइट।
0: लॉ का टीचर हिसाब में हम बात करते हैं, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम दूसरों के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं ये बात। बातें हैं एक स्टूडेंट सिर्फ किताबी ढंग से पढ़ करके लिखना अलग चीज है, उसको कोई ज्ञान लाभ उतना नहीं होगा। ये चीज किताबी ढंग से तो देखेंगे कि पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल ढंग से उसको दैनिक उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे करके, जैसे कोई टीचर है, टीचर का साथ वो लाइब्रेरी जाए, सब लॉ कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भारी भारी किताब रहता है, उसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट केसेस रहता है, ऑल इंडिया रिपोर्टर रहता है, हाईकोर्ट केस रहता है, ये सब थोड़ा से डिस्कस करना चाहिए टीचर का साथ। टीचर का साथ जैसे केस डिस्कस करेंगे, कैसे करके केस होता है, कैसे करके जजमेंट होता है, कैसे करके ऑर्डर होता है, ये सब चीज जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर क्या होता है, फैक्ट क्या है, आपको जानकारी हो जाएगा तो आप ड्राफ्टिंग कर सकता है। कैसे करके ड्राफ्टिंग, आपका लिखना पड़ेगा, एक प्लेन लिखना पड़ेगा, ये सब चीज प्रैक्टिकल चीज है, क्लिनिकल चीज है, ये सब चीज आप करेंगे तो आगामी दिन उसमें थोड़ा से जो स्टूडेंट है उसका प्रिविलेज मिलेगा। ये चीज बहुत बड़ा चीज होता है, सिर्फ किताब का अंदर आंख रख करके ये सब चीज नहीं चलना चाहिए, उसके साथ साथ आपका आंख खुला रखना चाहिए, कान खुला रखना चाहिए और आपका पेन खुला रखना चाहिए कागज का ऊपर। जो चीज आप लिखेंगे अपना मन से, आपका ड्राफ्टिंग आपका बहुत मायने रखता है, क्यों एक ड्राफ्टिंग करना, एक केस तैयार करना, ये बहुत आर्ट होता है, एक कला होता है एक एडवोकेट के लिए। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा तो जरूर वो विन करेंगे।
1: कार्यक्रम में चलते चलते आप लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगे?
0: लड़का लोग जो पढ़ाई कर रहा है, क्या लड़की लोग जो पढ़ाई कर रहा है, ये लड़का लड़की लोग थोड़ा से लाइब्रेरी फॉलो कीजिए, लाइब्रेरी में बहुत किताब है, ये बात नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वही हम पढ़ेंगे, ये बात नहीं है। एक एडवोकेट होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वहाँ का सब ज्ञान रखना चाहिए। अभी आपका हाथ में कोई इंजीनियर आकर के बोल रहा है मेरा इतना लॉस हुआ, ये सब चीज हुआ, ये सब चीज हुआ, कोई डॉक्टर आकर के बोला जे एक रोगी मर गया, हम मेरा ऊपर अटैक कर रहा है उसके साथ में, कोई मास्टर आकर के बोला है मेरा सर्विस लेकर के कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वैरायटीज केस आते हैं एडवोकेट के पास। तो एडवोकेट के पास जब वैरायटीज केस आते हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट का ऊपर ज्ञान रखना चाहिए, बिना ज्ञान में आप कैसे करके बात कर सकेंगे, वो बात का ऊपर आपको लिखना भी पड़ेगा सारा चीज। इतना तक हम सबको हम सलाह दे रहे हैं, जितना मेरा लॉ स्टूडेंट है क्या दूसरा कॉलेज का जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट आपका किताब का साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आज विशेष करके आज का दिन में जो मेडिएशन करके एक बात चल रहा है तो मेडिएशन का ऊपर भी थोड़ा से ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप सारा चीज देखिए, आपका सीनियर किसी का साथ आप जाइए, सीनियर कोई टीचर का साथ जाकर के कोर्ट का विषय में देखिए, सारा चीज ध्यान दीजिए, वो आपको जरूर डेवलप्ड होंगे, और दो दिन का बाद आपका चेहरा मुस्कुराया आएगा।
1: बिल्कुल सही आपने कहा सर, जब अंदर से कॉन्फिडेंस हो किसी चीज के भरपूर नॉलेज का तो उसका रिजल्ट चेहरे से दिखता ही है, आत्मविश्वास हो जाए तो उसकी जो मुस्कान है या उसका जो प्रतिफल है वो चेहरे जरूर दिखता है। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया और लॉ से संबंधित आपने बहुत सारी जानकारियां दी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: अभी आप सुन

रहे थे जयदीप सान्याल से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे लॉ की डिग्री के बाद करियर की संभावनाओं के बारे में। इनसे बातचीत कर रही थी श्वेता रानी। और आइए अब चलते चलते सुनते चले गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मेरा युवा भारत के तत्वाधान में साहिबगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से नशा मुक्त जीवन अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं को नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के संकल्प का संदेश दिया। रांची जिले की पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची के नगरी पुलिस थाने में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्पाद विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगलसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 290 लीटर अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई अन्य आरोपितों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विभाग ने कहा है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने देवघर स्थित घोरमारा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर विभिन्न पेड़ा दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पहले जब्त किए गए 1060 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा को नियमानुसार नष्ट कराया गया। विभाग ने कहा कि मेले की अवधि में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग जिले के चाक प्रखंड के बोंगा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध नकली डीएपी खाद और सरकारी अनुदानित डीएपी खाद के खाली बोरे बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि नकली खाद को सरकारी खाद के रूप में पैक कर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेहनत कश।

आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम मेहनतकश, जहां हम बात करते हैं मेहनतकश लोगों की, उनके हुनर की और उनके रोजगार से जुड़ी संभावनाओं की। मैं हूं आपकी दोस्त माधवी और आज हम बात करेंगे हथकरघा उद्योग की और इस क्षेत्र में रोजगार के साधन की। हमारे देश की पहचान केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं से नहीं बल्कि हमारे हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से भी है। सदियों से हमारे बुनकर हम अपने हाथों के हुनर से ऐसे सुंदर कपड़े तैयार करते आए हैं जिनकी सराहना देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हथकरघा उद्योग केवल कपड़ा बुनने तक ही सीमित नहीं है, यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। हथकरघा उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बुनकर। बुनकर हाथ से करघे पर सूती, रेशमी, ऊनी और खादी के कपड़े तैयार करते हैं। इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। बुनाई से पहले धागे तैयार करना, रंगना और उसकी गुणवत्ता बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। रंगाई छपाई से जुड़े कारीगरों की हमेशा मांग रहती है। आज के समय में पारंपरिक डिजाइनों के साथ आधुनिक फैशन की भी मांग बढ़ी है। ऐसे में टेक्सटाइल डिजाइनर, पैटर्न मेकर और रंग संयोजन विशेषज्ञों के लिए भी रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। हथकरघा से बने कपड़ों से कुर्ता, साड़ी, दुपट्टा, शर्ट, जैकेट, बैग और घरेलू सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इससे सिलाई से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिलता है।

लश्करगाह उद्योग केवल रोजगार नहीं देता बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत को भी जीवित रखता है। यदि युवा इन क्षेत्र में नई तकनीक, आधुनिक डिजाइन और ऑनलाइन विपणन को अपनाए तो यह उद्योग और भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। आज वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों की बढ़ती मांग ने हथकरघा उद्योग के लिए नए रास्ते खोले हैं। देश विदेश के बाजारों में भारतीय हथकरघा उत्पादों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यदि आपके आसपास भी कोई इस क्षेत्र से जुड़ा है तो उसका उत्साह बढ़ाइए और स्थानीय हथकरघा उत्पादों को अपनाकर उनके रोजगार को मजबूत बनाए। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, हम और भी बातें करेंगे। फिलहाल आइए मिलकर सुनते हैं एक गाना।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आइए सुनते हैं सृष्टि कमल से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगी केक मेकिंग स्वरोजगार का बढ़िया विकल्प है। इस बारे में इनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार।
3: श्रोताओं, आज के मेहनत कश कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक बेकरी व्यवसाय से जुड़ी शख्सियत सृष्टि कमल जी को। तो सृष्टि जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ नमस्कार।
4: धन्यवाद।
3: मैम, ऐसा है कि आजकल स्वरोजगार की ओर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है, युवा वर्ग भी देख रहे हैं कि अगर नौकरी मिलना संभव नहीं है तो स्वरोजगार एक ऐसा है, बहुत सारे विकल्प हैं रोजगार की अगर बात करते हैं तो आसपास। इसी में एक बेकरी व्यवसाय जो है काफी बेहतर, थोड़ा बहुत पूंजी लगा के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें इस व्यवसाय से आप जुड़ी हुई हैं, उनको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये व्यवसाय की शुरुआत किस प्रकार से होती है। खासतौर से आप इसमें केक बनाती हैं, बेकरी में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं लेकिन आप केक बनाती हैं, तो पहले ये बताइए कि इस कार्य को आप कितने वक्त से कर रही हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ?
4: तो ये 2 साल पहले की बात है। हाँ। उस वक्त पे कोविड आया था और मैं अपने थर्ड ईयर में थी कॉलेज में, तो हमारे कैंपसेस चल रहे थे, हमारी जॉब्स भी लग गई थी, बट जॉइनिंग से जस्ट कुछ टाइम पहले ही कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया।
3: अच्छा।
4: एक साल हम लोग पहले एक हफ्ते से, वो एक महीना हुआ, फिर 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ऐसा करके 1 साल हो गया। फिर धीरे धीरे सारी कंपनीज ने भी अपनी जॉब्स वापस लेनी शुरू कर दी। तो फिर और उस टाइम पे जॉब्स भी नहीं थे होटल्स, क्योंकि होटल सारे लॉस में चल रहे थे बहुत ज्यादा। तो उस वक्त पे और कहीं जा भी नहीं सकते थे, बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। तो फिर ठीक है, क्या करें, और मेरा बर्थडे भी था तो मैंने अपने बर्थडे पे बेसिकली केक बनाया था।
3: अच्छा,
4: तो
3: अच्छा।
4: सबको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप बना के देखो कि कैसा रिस्पांस आता है। तो फिर बनाना शुरू किया, तो पहले महीने में बस 2 ऑर्डर्स थे, फिर वो धीरे धीरे 4 हुए, 6 हुए, फिर पता नहीं लगा कि कब पर दिन 6 ऑर्डर्स आने लगे, जो मतलब ये मैक्सिमम था कि 6 ऑर्डर्स ही हम लेते थे, उसके आगे हम रोक देते ऑर्डर्स लेना बिल्कुल ही। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। अच्छा,
3: बस
4: है।
3: उस प्रकार से इसे आपकी शुरुआत हो गई।
4: हाँ।
3: चलिए, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि ये जो 6 ऑर्डर आप जैसे इस काम को स्वयं करती हैं या फिर घर के लोग हाथ इसमें बताते हैं, कोई स्टाफ वगैरह भी रखी हैं?
4: अभी तो फिलहाल स्टाफ तो नहीं रखा है मैंने। अच्छा। तो अभी तो है कि हाँ, जैसे सारे बर्तन वगैरह का काम हो गया या कभी कोई बॉक्सेस बनाने केक का, तो उसमें मम्मी हेल्प कर देती हैं।
3: अच्छा।
4: अदरवाइज क्योंकि केक वगैरह का काम का तो मेरे को ही आइडिया है, वैसे हाथ बैठा हुआ, वो नहीं कर सकते और कोई, अगर उनका प्रैक्टिस नहीं है तो बाकी काम तो मेरे को ही करना पड़ता है फिलहाल कोई, क्योंकि अभी कोई भी स्टाफ नहीं है, अभी अकेली हैंडल करना होता है सब कुछ।
3: तो काफी मेहनत। और वैसे अभी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
4: अभी मेरे मास्टर्स बस खत्म होने वाले हैं।
3: अच्छा,
4: IHM पूसा से, और मैंने ग्रेजुएशन करी थी होटल मैनेजमेंट में ही चंडीगढ़ से, IHM चंडीगढ़ से।
3: अच्छा, तो जो जॉब आपकी लगी थी वो होटल मैनेजमेंट में ही जॉब लगी थी या कहीं और लगी?
4: हाँ जी, ओब्रॉयज में लगी थी।
3: अच्छा, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन फिर वो जाते लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको उसका अफसोस होगा, क्योंकि आपने उसको रिकवर किया इस व्यवसाय को स्टार्ट करके।
4: हाँ, बहुत। हाँ, एक एक्सपोजर मिला, पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी मेरा अच्छा इंटरेस्ट है
3: जी,
4: और पता चला कि हाँ, मेरे इंटरेस्ट अभी तक हम यहाँ इतना आगे तक पहुँच सके।

0: अच्छा ये बताइए कि इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आपने पूंजी कितना इन्वेस्ट किया अभी?
1: स्टार्टिंग में तो 800 रुपए ही लगाए थे घर पे, पहले
0: अच्छा
1: से अवन था
0: हाँ,
1: ही
0: बहुत मिनिमम अमाउंट था।
1: तो सर वक्त के हाँ, दो केक का डब्बा ले आया, दो केक
0: हाँ
1: बेस ले आया, एक विप क्रीम का डब्बा ले आया था, ऐसे
0: हाँ
1: करके बस कि हाँ दो तीन केक के लायक का सामान लेके आया कि पहले देखते रिस्पॉन्स कैसा है। फिर तीन केक से जो पैसा है उससे और सामान आया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर अभी है कि पहले से अवन तो था ही, फिर फ्रिज लिया, फिर ये मतलब इक्विपमेंट्स, फिर टे मतलब जितने भी केक मोल्ड्स वगैरह वगैरह, फिर उसमें बहुत तरीके के टाइप्स आ गए। तो अब है कि हाँ अब पहले से बहुत बेहतर कलेक्शन है मेरे पास।
0: अच्छा मैम ये बताइए कि इक्विपमेंट की आपने बात की, सामग्री की आपने बात की, एक्चुअली कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता है इसमें पड़ती है एक केक के लिए? जो बाहर से जैसे सेब आते हैं तो हर सेब का एक डब्बा होता है या क्या होता है, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: देखिए अवन तो बेसिक है, आप कुकर में केक बनाना, अवन में केक बनाना बहुत डिफरेंस होता है।
0: अच्छा बेहतर
1: और
0: कहाँ बनता है?
1: अवन में, क्योंकि अवन में आपका चारों तरफ से हीट पड़ता है केक पे, तो वो चारों तरफ से बेक होता है। कुकर में सिर्फ नीचे से हीट पड़ता है जहाँ पे आँच जल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे से जलने का चांस है, ऊपर से ढंग से पकता नहीं है। फिर आप बार बार कुकर खोल के देखते हैं कि वो पक्का है कि नहीं। फिर आपको फ्रिज भी वैसा चाहिए केक के लिए, घर का फ्रिज नॉर्मल फ्रिज नहीं, मतलब क्योंकि उसमें आपका फ्रॉस्ट होता है तो वो केक को थोड़ा मॉइस्ट कर देता है उसका क्रीम को, तो ट्रैवल
0: अच्छा
1: करते वक्त केक टूटने का चांसेस बहुत रहता है। तो फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर, स्टैंड मिक्सर और इस तरीके के इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी है अगर आपको बेकरी, मतलब अगर थोड़ा प्रॉपर करना है तो।
0: आमतौर पर मान के चलिए एक आप केक बना रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सामग्री उसमें लगेगा बनाने के लिए।
1: तो पहले तो मतलब आपका जो स्पॉन्ज है वही मैदा, बेकिंग
0: हाँ
1: पाउडर, बेकिंग
0: जी
1: सोडा, ये
0: ठीक
1: सब
0: है।
1: हो जाता है। फिर विप क्रीम हो गया, आपको अगर चॉकलेट केक बनाना तो आपको गनाश बनाना होता है, जो आपका क्रीम और चॉकलेट को गर्म करके बनाया जाता है।
0: जी
1: वैसे ही जैसे जैसे फ्लेवर है, ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी कंपोट आता है, चॉकलेट का बता दिया मैंने, फिर आपका वनीला में तो नॉर्मल विप क्रीम और
0: जी
1: स्पॉन्ज का
0: बिल्कुल
1: केक हो गया, तो ऐसे आपका वेरिएशंस होता है इसमें।
0: और आजकल देखते हैं कि बहुत से घर में महिलाएं जो बच्चियां हैं खासतौर से नेट में यूट्यूब के माध्यम से निकाल लेती केक कैसे बनाए और उससे भी देख देख के बने ठीक ठाक खाने लायक वो बना ही लेती हैं, ये भी एक।
1: ये है मतलब YouTube पे है बहुत सारे वीडियोस, बट जो एक बेसिक होता है वो
0: हाँ
1: आपको एक टीचर ही सिखा
0: एक
1: सकते
0: टीचर ही
1: हैं।
0: सिखा सकता
1: हाँ क्योंकि
0: है।
1: वो वीडियोस में नहीं होते।
0: तो आपने तो कहीं ट्रेनिंग लिया नहीं था, आपने तो सीधे स्वतः ही शुरुआत किया इस तरह।
1: एक्सपीरियंस से शुरू के
0: अच्छा
1: केक्स बहुत मेरे वैसे ही थे कि हाँ घर वाले केक्स है, फिर धीरे धीरे धीरे करते करते फिर आपका एक्सपीरियंस भी होता है, आपका हाथ भी बैठता है, आपको समझ आता है कि आपको कैसे क्रीम को हैंडल करना है, कैसे स्पॉन्ज को हैंडल करना है।
0: सृष्टि जी आमतौर पे हमारे युवा जो सुन रहे हैं और ये व्यवसाय काफी बेहतर है, घर से कहीं दुकान भी आप नहीं ले रहे हैं, घर से ही इसे अब किया जा सकता है, तो आमतौर पर उन्हें कहीं प्रशिक्षण लेना चाहिए इसका? तो आसपास कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती हो तो उसके बारे में बताएं।
1: झारखंड में तो मुझे एकदम आइडिया नहीं हमको, बट दिल्ली वगैरह में हो सकता है,
0: हाँ बड़े बड़े
1: जो
0: सिटीज में तो हैं।
1: ऐसे तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बेकरी में डिप्लोमा भी होता है।
0: जी बिल्कुल
1: और मतलब जैसे आपका बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव में है इनके इंस्टीट्यूट्स, बट अगर आपको कुछ बेसिक सीखना है तो इसका मतलब झारखंड में आइडिया नहीं है हमको बहुत ज़्यादा।
0: मेरे ख्याल से होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स आप करते हैं तो उसका भी क्षेत्र होता है क्या? अगर बेकरी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग होती है, मतलब होटल मैनेजमेंट करने से भी काम चल सकता है तो उसमें भी
1: कर सकते हैं, बट वो मतलब आपका एकदम
0: बेकरी की
1: फोकस
0: ट्रेनिंग।
1: नहीं होता है। होटल मैनेजमेंट में आपका 4 डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग, फ्रंट
0: हाँ
1: ऑफिस, किचन
0: अच्छा हाँ
1: और आपका एक और F&B हो गया,
0: हाँ
1: फूड एंड बेवरेजेस।
0: हाँ
1: तो आपको
0: तो
1: चार डिपार्टमेंट होता है, आप जब फाइनल ईयर में होते हैं तो
0: हाँ
1: आप एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट खुद से चूज करते हैं,
0: हाँ
1: फिर आप कैंपस में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बैठते हैं।
0: तो मेरे ख्याल से वहाँ भी एक स्कोप है कि आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
1: हाँ
0: हाँ और अगर नहीं है तो आप घर में तैयारी करें इसके। आमतौर पे एक व्यवसाय के रूप में अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है आपके अनुसार?
1: 50,000 से भी लोग शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है,
0: हाँ
1: बट बेकरी का कोर्स
0: अगर छोटे मोटे हल्के में करना है तो 10-20 हज़ार से भी शुरुआत हो सकती है, 2-4 अगर बनाना है तो।
1: हाँ, बट
0: हाँ
1: अब हमको लगता है कि लोगों को कोर्सेस करना चाहिए,
0: हाँ
1: क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं है कि हाँ विप क्रीम फेटा, आपने स्पॉन्ज बनाया और केक बनाया, आपको साइंस पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। और क्या मतलब आप मार्केट में क्या निकाल रहे हैं, अगर आप कौन सा मैदा यूज़ कर रहे हो वो क्या मैदा, मैदा में भी बहुत वेरिएशंस होता
0: जी
1: है,
0: जी
1: चॉकलेट में भी
0: बिल्कुल,
1: बहुत वेरिएशन होता है,
0: हाँ
1: आपको नॉलेज होना उसका ज़रूरी है,
0: हाँ
1: कोर्स करना चाहिए आई गेस सबको, अगर उनको आइडिया होना चाहिए अब
0: अच्छा, अभी अभी अभी तक आपने जितने भी सामान वगैरह जो आपने कहा ये सारे लेकर के आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की है, अभी तक आपने कितना पैसा लगाया हुआ है?
1: हाँ अप्रोक्स 80-1 तक गए
0: है ना, एक तक कर लिए। अभी बताइए कि कुल मिला जुला कर महीने में आपकी इनकम कितनी आ जाती है?
1: ये डिपेंड करता है क्योंकि
0: हाँ।
1: अभी जैसे सीजन ऑफ है तो
0: हाँ।
1: वो आपका डिपेंड करता है कि अभी कितना जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है
0: हाँ।
1: कि इतना ही जाना है,
0: लेकिन फिर भी एक मिनिमम मिनिमम
1: कभी काउंट नहीं करा मैंने
0: फिर भी हमारे श्रोताओं को बताया कि अनुमानता आप अभी कितना कमा लेती?
1: अभी अगर ऑफ सीजन है तो फिर आपका 25 हो गया
0: हाँ।
1: या फिर आपका 50 चला गया, 60 चला गया सीजन के हिसाब से।
0: अच्छा सीजन के हिसाब से
1: हाँ।
0: ऑफ सीजन मतलब 15-20 हजार रुपये में कमी नहीं है, उतना आपको आ जाता है ना। अब ये बताइए मिनिमम केक आप कितने का मतलब आपके यहाँ कितना से शुरू होता है? श्रोतागर सुन रहे हो तो
1: हम लोग का क्वालिटी
0: हाँ।
1: मतलब हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं।
0: एक पाउंड का कितना कीमत रखते?
1: 350 से शुरू है
0: अच्छा,
1: और 1100 तक गए।
0: तो इस एरिया ये तो अच्छे एरिया में आप हैं, तो यहाँ पर कितने का ऑर्डर आपको मिलता है, कितना बड़ा केक का
1: आ जाता है? आपका एंगेजमेंट केक आ गया
0: हाँ,
1: कभी
0: एंगेजमेंट में तो 1000 से कम का मिलेगा ना अब आपकी बर्थडे केक है तो शॉर्टकट में गार्जियन चाहते हैं कि आजकल निकालना है तो वही 300-350 मैक्सिमम।
1: मतलब आप जैसे हम लोग केजीज में डील करते हैं, हाफ
0: हाँ,
1: केजी 1 केजी, हम लोग 1 पाउंड 2 पाउंड नहीं
0: अच्छा,
1: डील करते क्योंकि हम लोग का केक बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है
0: हाँ,
1: साइज है,
0: सही है।
1: और मतलब वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, उनको कितना बड़ा केक चाहिए, उस हिसाब से वो हमको जैसे अगर बताएंगे कि हाँ 10 लोग आएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ आपका 1 पाउंड में हो जाएगा या 2 पाउंड में हो जाएगा।
0: अच्छा, तो मतलब इस व्यवसाय से आप खुश हैं और आगे अभी पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं?
1: अभी तो फिलहाल व्यवसाय से ही खुश हूँ।
0: तो चलिए ठीक है, अपने घर में रह करके और अपने गाँव घर में रह के हजारीबाग में रह करके आप तो इतना अच्छा व्यवसाय कर रही हैं, लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, आप भी 4 पैसे कमा रही हैं और लोगों के लिए एक आइकॉन हैं, आप लोग काफ़ी आपको पसंद भी करते हैं, चाहते भी, आपके फॉलोअर्स भी हैं। तो शुभकामनाओं के साथ चलते चलते एक बार जवाब कि नए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे, अगर बेकरी व्यवसाय के क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, खासतौर से केक बनाना चाहती हैं या चाहते हैं कोई भी हमारे श्रोता, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका?
1: देखिए बेकरी बहुत फैसिनेटिंग लगता है दूर
0: हाँ,
1: से देखने में कि हाँ कितना सुंदर है, कितना हैपनिंग है, बट इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
0: कंपटीशन है, मेहनत भी है,
1: अब जहाँ
0: टेस्टी भी आपका होना चाहिए
1: हाँ। आप अब किसी कस्टमर को चाहिए कि नहीं हमको बस सस्ते में 150 रुपए का केक चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, बट आपको उनको बिलीव कराना है कि नहीं आप क्वालिटी बेच रहे हैं इसलिए हम 300 रुपए में ये केक निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी, हमारा टेस्ट है। तो आपको वो चीज़ भी मतलब ये बहुत बड़ा कंपटीशन है अपने आप में ही, कस्टमर को कन्वेंस करना कि आप उनको क्या सर्व कर रहे हैं। और अभी मतलब जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ के या बाहर से लोग रहे हैं या बाहर जाते हैं तो उनको आइडिया होता है, जो यहाँ पे है नहीं रहे मतलब यहीं पे हमेशा से रहे तो उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, या तो आप क्वालिटी निकाल सकते हैं या तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, दोनों हमेशा अपोजिट ही रहेगा। अगर आप क्वांटिटी निकालना है आपको ज़्यादा सस्ते में तो आप क्वालिटी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, कुछ का किसी चीज़ का भी दाम नहीं गिर रहा, तो आपको मार्केट में मेंटेन करने के लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करना होगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या लोग देखता है और क्या लोग ढूंढ रहे हैं, तो आपको हमेशा मतलब ट्रेंड के साथ भी चलते रहना पड़ता है कि कभी पिनाटा आया, कभी सरप्राइज बॉक्स, कभी कुलमी अब केक्स आया, तो आपको उस हिसाब से भी चलना पड़ता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि कमल जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और श्रोताओं के लिए अच्छी जानकारी दी कि एक व्यवसाय के रूप में इसे किया जा सकता है और थोड़ी सी तन्मयता के साथ में और तैयारी के साथ में, और अगर कहीं से सीख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी बातचीत से ही पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सृष्टि कमल से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रही थी केक मेकिंग स्वरोजगार का बढ़िया विकल्प, इस बारे में इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, कार्यक्रम मेहनत कश्य माधवी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत कश, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में करीब फिल्म का ये गाना।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे राज्य केंद्र से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे फैमिली नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
7: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
8: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
7: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का

0: लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का किया आह्वान। राज्य की सभी 4000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे आधार सेवा केंद्र। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की घोषणा। परिवहन मंत्री दीपक बरुआ का बयान, अब ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं। जल्द ही पंचायतों में शुरू होंगे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल। जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजनीति तेज। भाजपा ने राज्य सरकार पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। कांग्रेस ने कहा छवि धूमिल करने की कोशिश। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। कहा खेल और अन्य क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए हैं।
0: श्री मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की डिजिटल पंचायत पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से सभी 4,345 ग्रामीण पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों के शुरू हो जाने से डिजिटल सेवाएं गांवों में ही सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाएंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि गोड्डा जिले के महगामा की सारोतिया पंचायत में आधार सेवा केंद्र शुरू भी हो गया है। परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि राज्य के 242 पंचायतों में पहली बार विशेष ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाया गया, जहां अब जल्द ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल भी होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक तक त्वरित सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पंचायतों में ही लगने वाले विशेष शिविरों के माध्यम से मौके पर ही लर्निंग लाइसेंस निर्गत कर दिए जाएंगे। राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है।
2: 2019 से कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और 2019 से लेकर के अब तक जेपीएससी के परीक्षाएं हुए, जेएससी के परीक्षा हुए, सीजीएल के परीक्षा हुए और जो अन्य परीक्षाएं हुए, सभी परीक्षाओं में परीक्षा के पूर्व बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और फिर परीक्षाएं स्थगित हो जाती है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है कि बार बार झारखंड में इस प्रकार की घटना क्यों घटी? छात्रों का एक ही डिमांड है, लाखों युवाओं का जो भविष्य खराब करने का काम किया है, किसके संगठन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है।
0: वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है।
3: चीख चीख के जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ना, ये कहीं न कहीं कि हमारी सरकार को बदनाम करने की भी साजिश है, क्योंकि आपने देखा होगा जेपीसी का जो अध्यक्ष थे इस्तीफा उनका लिया गया, सीआईडी के पूरी जांच है, सारे जो प्रक्रियाएं वो हम पूरा कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन छात्रों से संवाद होनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के महादेवसाल धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला और रेल प्रशासन ने मेले के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल ने आज से महादेवसाल स्टेशन पर 22 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी शुरू किया है। ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परिसीमन संबंधी बयान को लेकर प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगाया है कि असम में परिसीमन प्रतिनिधित्व के बजाय राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर किया गया है।
3: जिस प्रकार असम में किए गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जानबूझ के वो वोट के दृष्टिकोण से, प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से 543 यहाँ जो हम लोग सांसद हैं, तो सारे लोग तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं, एक केवल हिस्सा हम रहते हैं संसद के अंदर। तो क्या इस प्रकार की संख्या बढ़ाने के बाद आपको उनको प्रॉपर औचित्य मिल पाएगा?
2: उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है।
4: भाई, गृह मंत्री जी ने जब स्पष्ट कर दिया कि डिलिमिटेशन के जरिए जिन राज्यों की सीटों की संख्या अभी वर्तमान में जितनी है उसे डेढ़ गुना बढ़ जाएगी, तो जिसकी सीटों की संख्या 40 है वो बढ़ के 60 हो जाएगी, तो किसी राज्य के साथ भेदभाव करने की कहां बात हो रही है? राहुल गांधी जानबूझकर अशांति पैदा करना चाहते हैं, एक डिस्कोर्स चलाते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं।
2: राज्य सरकार के निर्देश पर साहिबगंज जिले के सभी अनुमंडल और अंचल कार्यालयों में कल से 7 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्थानीय निवासी जाति, आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आज कहा कि देश के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि खेल समेत अन्य क्षेत्रों में भी देश लगातार तरक्की कर रहा है।
5: जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है वो समाज हर क्षेत्र में सक्रियता से काम कर, खेलों पर भी उनकी रुचि जो है वो जानते हैं कि कैसे हमारे बच्चे अच्छा खिलाड़ी प्रदर्शन करें और एक हमारे देश की अलग पहचान बने।
2: नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने आज नई दिल्ली में साइक्लोथोन का आयोजन किया। ये आयोजन 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी रांची समेत लोहरदगा, गुमला और खूंटी के अलावा राज्य के कई जिलों में परसों से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बताया कि इस महीने वैसे तो सामान्य से कम वर्षा होने की अनुमान है, लेकिन बीच बीच में मौसम प्रणाली के सक्रिय होने पर अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का किया आह्वान। राज्य की सभी 4000 से अधिक ग्रामीण पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे आधार सेवा केंद्र। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की घोषणा। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का बयान, अब ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं। जल्द ही पंचायतों में शुरू होंगे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल। जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजनीति तेज। भाजपा ने राज्य सरकार पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। कांग्रेस ने कहा छवि धूमिल करने की कोशिश। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। कहा खेल और अन्य क्षेत्रों में लगातार तरक्की कर रहा है देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
1: और ये मेरी गुड़िया थी ना।
3: पर दादी, आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरबीआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची द्वारा रामगढ़ जिले को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सेवाओं के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। रामगढ़ जिले की तरफ से डॉक्टर विश्वनाथ उराव एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोला डॉक्टर अपराजित ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस विषय पर बात करते हुए जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने पूरे हेल्थ विभाग की टीम को धन्यवाद देते हुए बताया कि गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण देखभाल और सरकारी योजनाओं से उनको लाभान्वित करने तथा जननी सुरक्षा योजना से उनको आच्छादित करते हुए उनके सुरक्षित प्रसव कराना सुनिश्चित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
2: इसमें विभिन्न इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि मातृत्व जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके गर्भवती होने से लेकर के डिलीवरी होने तक उनके ANC होना, उनका टीकाकरण होना, टाइम टाइम पर उनकी दवाइयों का मॉनिटरिंग होना, इसके साथ साथ में जो सरकारी योजनाओं से उनको लाभान्वित होता है उनके साथ उनको टैग किया जाना, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको आच्छादित किया जाना, उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के पश्चात उन्हें पोषक आहार होता है बच्चों को देना और टीकाकरण वगैरह कराना।
1: रामगढ़ के एक निजी सभागार में पिछले दिनों राष्ट्र जागरण एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित साहित्यिक संगठन राष्ट्रीय कवि संगम का झारखंड प्रांत की प्रांतीय कार्यकारिणी अधिवेशन 2026 आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कवि संगम में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि आज के समय में साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली शक्तिशाली ऊर्जा है। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल ने बताया कि राष्ट्रीय कवि संगम कविताओं के माध्यम से देश की युवाओं और महिलाओं में जागरण करना चाहता है।
3: राष्ट्रीय कवि संगम कविताओं के माध्यम से देश में युवाओं में जागरण करना चाहता है, महिलाओं में जागरण करना चाहता है, और निश्चित ही कविता की शक्ति एक विशेष प्रकार की होती है जो विधानसभाओं में भी गूंजती है, राज्यसभा में भी गूंजती है, लोकसभा में भी, जनसभाओं में भी। किसी भी नेता का भाषण तभी सशक्त होता है जब उसमें कविता की चार पंक्तियां आती हैं।
1: NTPC लिमिटेड एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम पतरातू विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड द्वारा पिछले दिनों द्वितीय एस यूजर मीट 2026 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अपशिष्ट से समृद्धि तक परिवर्तन की सशक्त एवं सतत यात्रा के बारे में विभिन्न माध्यमों से आम जन को अवगत कराना, ताकि लोग फ्लाई एस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए एक सागल मुख्य कार्यकारी अधिकारी PV UNL ने कहा कि एस को अब अपशिष्ट नहीं बल्कि देश के लिए एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सतत अवसंरचना विकास एवं आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
4: ये चैलेंज हमने लिया है सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए, इस ऐश को मैक्सिमम यूज किया जाए सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, तरह तरह के तरीके निकाल, और उसी दिशा में हमने ये मीट ऑर्गेनाइज किया है।
1: एस टू एसेट की अवधारणा को साकार करने की दिशा में

0: भी यूएनएल अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके उपयोग से एक तरफ आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे तो दूसरी तरफ सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
1: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। सच्चा झूठा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

कभी खुशी कभी गम। सुनते हैं इस फिल्म का गाना कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छनकार। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कभी कभी से, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

आई सुनते हैं जुर्माना फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म खामोशी में। इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है।

बातों बातों में आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में।

आइए सुनते हैं बरसात की रात फिल्म से कव्वाली, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को फिल्म बाजीराव मस्तानी में। आइए अब सुनते हैं धनवान फिल्म का गाना सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बैराग में। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: का नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे

0: देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब 6ठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितम्बर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना

0: करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
3: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज

0: listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को, एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे ना जाओ शाम पैया परू बीच धारे ना जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए केंद्रीय हिंदी रूप के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की ये महफिल सजी है सावन के गीतों के साथ। सावन यानी भीगी हवाओं का मौसम, रिमझिम फुहारों का संगीत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दिल की अनकही भावनाओं का महीना। भारतीय फिल्मों ने भी सावन के इन रंगों को कभी प्रेम, कभी विरह, कभी मिलन और कभी उत्सव के रूप में बड़े खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा है। आज के इस संगीत के सफर में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर फिल्म गीत, जिनमें कहीं बारिश की फुहार है, कहीं झूले की मस्ती, कहीं पायल की छनक है, तो कहीं दिल की धड़कनों का संगीत। सावन केवल मौसम नहीं, एक एहसास है। यह प्रेम का भी मौसम है, मिलन का भी, यादों का भी और कभी कभी विरह का भी। सावन में कहीं झूले लगते हैं तो कहीं मेले, और गांव की मस्ती पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। आइए सुनते हैं बहु बेगम फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज है, पसंद आप सभी श्रोताओं की है। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, अबाबू रेयांस ठाकुर। दौलताबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। बेरडी से हुकुम करमकार, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु। मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिस्क, जैतेक बीरक और मीका बीरक।

काया सावन झूमके सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। पसंद आप सभी श्रोताओं की चेपा कलाबड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, दिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। मेन रोड बनोसा दरियापुर अमरावती से यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान और माधवी चौहान। पंचमंदी रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू, निलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। कहते हैं जब बादल बरसते हैं तो दिल भी गुनगुनाने लगता है। मौसम की ताजगी और सुरों की मिठास का यह सुंदर संगम है। सावन भारतीय ऋतुओं का वह महीना जिसका इंतजार केवल धरती ही नहीं मन भी करता है। पहली बारिश की बूंद जैसे ही सूखी धरती को छूती है चारों ओर सौंधी सौंधी खुशबू फैल जाती है। पेड़ पौधे धुलकर हरे उठते हैं, नदियां तालाब भरने लगते हैं और प्रकृति जैसे नई ऊर्जा से भर जाती है। तभी तो कहते हैं आया सावन झूम के।

बारिश केवल खेतों को ही नहीं सींचती बल्कि रिश्तों को भी ताजगी देती है। कई बार कोई पुराना गीत सुनते ही बचपन की यादें लौट आती हैं। छत पर भीगना, कागज की नाव चलाना और परिवार के साथ बिताए वो खूबसूरत पल। आइए सुनते हैं पहली फिल्म का गाना, हेमलता और सुरेश वाडेकर की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की डम्भाडी हरली बड़का गांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभु चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, पराजिता, सम्मी, अपूर्व, टुकू और उनका पूरा परिवार, जामाडोबा से मोहम्मद रफीक अंसारी, बेगम फरीदा रफीक, सीसीएल बरकाकाना से रविन्द्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया और वसी, अमन और बेबी सोना बाबू, आर के वर्मा।

कभी बारिश प्रेम का संदेश बनकर आती है, कभी जुदाई की कसक जगाती है, तो कभी जीवन में नई उम्मीद लेकर आती है। हमारे महान गीतकारों ने शब्दों में सावन को जिस खूबसूरती से पिरोया, संगीतकारों ने उसे मधुर धुनों में डाला और गायकों ने अपनी भावपूर्ण आवाज से उसे अमर बना दिया। यही कारण है कि पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन ये गीत कभी पुराने नहीं होते। आज भी जब कहीं दूर सावन का गीत सुनाई देता है तो मन पर बस उसी दिशा में खिंचा चला जाता है। यही तो है संगीत का जादू। सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की ओल्ड लिंसेस ग्रुप बरका काना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना, अफजाल ताज और तशनीम, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, मेन रोड बड़कागांव से ये दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा, पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया, नया टोला भिकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा, विकास, नितिन और मनोज पासवान।

उम्मीद है कि सावन के गीतों से सजी यह प्रस्तुति आपके मन को भा गई होगी और इन गीतों ने आपकी कुछ पुरानी यादों को भी ताजा किया होगा। संगीत का आनंद तभी पूरा होता है जब उसे दिल से महसूस किया जाए और हमें विश्वास है कि आज की यह महफिल आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। इसी उम्मीद के साथ अपनी दोस्त माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी सावन की हरियाली, खुशियां और संगीत यूं ही बना रहे।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम शामी गजल।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में ये गजल। आइए अब सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गजल। बोल हैं आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं।

कल चौथवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। सुनते ही ये गजल गुलाम अली की आवाज में।

गुलाम लिखी गाय इसी गजल के साथ कार्यक्रम शाम गजल यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।